आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

106.3 FM, Geo Bindas.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

Denisha. Denisha. जोग्राफिया ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर आई हूँ जी। मैं उदित नारायण साहब और श्रेया घोषाल की आवाज में सुपर 30 से ये बहुत ही कमाल गाना सुना आपने। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, यही जानना चाहूंगी। आपको पता है शुरुआत आपके बिना कैसे हो सकती है यार। इट्स मंडे ऑगस्ट 17th, कल का दिन कैसा रहा और आज क्या प्लान है, अभी क्या कर रहे हैं, काम के लिए निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, अभी उठे हैं, रेडी हो रहे हैं, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन। थोड़ा सा वक्त निकाल के बस एक छोटू सा गुड मॉर्निंग भेज दो यार 3311063 पर। भाई साहब ये मूवी अगर नहीं देखी है ना तो देख लो, बहुत कमाल है। I do not know what impact this era, you know, जो indie pop era था 90s का Bollywood का, not really Bollywood, independent music basically, वो कुछ अलग ही था यार, कुछ तो impact छोड़ दिया। इन गानों से कभी बोर नहीं होते और एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। फिर हिमेश रेशमिया भी आए थे। तो गलत बात है, ये कोई डरने वाली चीज थोड़ी है। इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, खुद से प्यार करो सबसे पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्यार करते रहना चाहिए। बाकी आप मुझे बताइए कि कैसे हैं, क्या हाल चाल है। 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर। और सुन रही है रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू शॉप।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: नेहा कक्कड़ की आवाज में जाने जा मूवी से टाइटल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर और मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं जरा नाजनी जी का मैसेज आया है कहती हैं गुड मॉर्निंग पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग इट्स द एबिलिटी टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल वर्किंग हार्ड फॉर व्हाट यू बिलीव इन इंडीड और बहुत मुश्किल काम होता है यार मुझे पेशेंस की काफ़ी कमी है एंड ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट बट या इट वर्क्स वंडर्स जब आप यू नो वो एक्सेप्ट कर लेते कि यार थोड़ा पेशेंट होना तो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में हर चीज़ जल्दी नहीं मिल जाती और संधु जी का भी गुड मॉर्निंग है गुड दिवाली मॉर्निंग है जी मे यू हैव अ वंडरफुल डे हरपाल संधु फ्रॉम द कंसेक्रेट जी ओ बिंदास एंड शशिकांत पाटिल जी ने भी मैसेज किया है गुड मॉर्निंग टेक एवरी चांस इन लाइफ बिकॉज सम थिंग्स ओनली हैपन वंस ट्रू एवरी डे इज अ न्यू डे एंड इट इज़ गोना हैपन वंस ओनली ये दिन दोबारा नहीं आएगा तो इसको खुल के जीने का है ठीक है और अबरार जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें कहते हैं समय और शब्द दोनों अनमोल होते हैं एक लौट कर नहीं आता दूसरा लौटाया नहीं जा सकता ब्यूटिफुल एंड सो सो सो डीप समझ रहे हो बात को एंड इमरान जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग वॉइस बॉक्स मैजिशियन आरजे तनिषा सेंडिंग यू गुड वाइब्स एंड मैसिव अमाउंट ऑफ कॉफी फॉर टुडे शिफ्ट अरे थैंक यू सो मच आई एम मोर ऑफ अ चाय पर्सन बट मैं कॉफी से काम चला लूंगी आपने इतने प्यार से भेजिए तो थैंक यू यार एंड जसा जी का भी गुड मॉर्निंग आया है सबको अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी वाली गुड मॉर्निंग कैसे मिस कर गई मैं
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल
1: हाय हाय
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस
1: This is just to remind you, मेरी जान, that you are absolutely amazing. Just believe in yourself और अपने दिन को पूरी तरह से enjoy करो. Stay tuned and Jio Bindas.
0: Cool song.
3: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool song of the

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. डाउनलोड इट टुडे.

वाह लाइफ हो तो ऐसी मूवी से केके की आवाज में तेरी याद याद हिमेश रेशमिया का म्यूजिक अलग ही पहचान जाता है इंसान है ना. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम दरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड आई रेड समथिंग आई न्यू अबाउट इट पर ऐसे वो फेड अवे हो जाती है ना चीजें एंड देन आप उसको दोबारा से देखते हो और फिर आपको याद आता है अरे हाँ ये भी तो था एंड दिस इज सो एक्यूरेट. सो देयर इज दिस कोट व्हिच सेज नो Never go to a grocery store or you know to buy groceries when you're hungry. क्योंकि उस वक्त आप सब कुछ ले लोगे जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं है. And it is not about groceries, by the way. It is about us, our lives. You know, if you are feeling a lack of sympathy, empathy, love, warmth, affection, और आपको किसी ने थोड़ा सा भी ऐसे ब्रेड क्रम्स के नाम पे भी दे दिया ना तो आप बहुत खुश हो जाओगे. सब यू नो योर छावर है उस इंसान पे टाइप्स हो जाओगे. बट नो यू डिजर्व मोर देन दैट. दैट इज वाई जब तक आप खुद में कंटेंट फील नहीं करते ना यू शुड नॉट लुक फॉर लव आउटसाइड. सबसे पहले अपने आप से प्यार करो. अपने यू नो सेल्फ लव इज रियली इंपॉर्टेंट. इट एम्पावर्स यू एंड वो आपको बाउंड्री बनाने में बहुत हेल्प करता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं क्या नहीं डिजर्व करते हैं. बिकॉज जब सेल्फ लव की कमी होती है ना तो उसकी कमी पूरी करने के लिए हम बाहर से ढूंढते हैं और फिर वो जो भी मिल रहा होता है एक्सेप्ट करते हैं. वो लेटर ऑन यू नो बहुत वक्त के बाद जाके पता चलता है अरे यार मैं तो ये डिजर्व नहीं करती थी. व्हाई डिड आई डू दैट टू माय सेल्फ. सो मेरी जान स्टार्ट विद योर सेल्फ. जब लगे कि अरे भाई भर चुका है सेल्फ लव ऐसे ऊपर ऊपर तक एंड आई नो व्हाट आई डिजर्व एंड यू नो व्हाट यू कैन गिव टू पीपल देन ओनली गो आउट एंड लुक फॉर इट. ठीक है कोई और उस प्यार की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता जो आप खुद को दे सकते हैं. संतरे रेडियो ऑल जियो बिंदास.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: प्यारी चाय लबों से यूं चुराओगे। तनिषा तनिषा
1: What a beautiful track, यार पापॉन की आवाज में GAQ only on Radio Olive 106.3 FM तनिषा आपके साथ दिन दस मॉर्निंग चल रहा है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा मैं लॉस्ट हो गई थी उस गाने में, तो मैं वर्ड जी भूल गई यार अपने। लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल है कि ये मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेट्स सी कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है। द क्वेश्चन इज, आपने मुझे एक ऐसे पेड़ का नाम बताना है जो कि रियल नहीं है, असली नहीं है, क्या नाम है उस पेड़ का बताएं मुझे 3311063 पर, या फिर कॉल कर दे 4444106 पर। एक ऐसा पेड़ जो कि रियल नहीं है, असली नहीं है, 3311106 Stay tuned to Radio Olive, Jio Bindaas।
2: Radio

0: से स्कूल।
1: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: राघव चैतन्य की आवाज में सचिन जिगर का म्यूजिक ब्यूटीफुल ट्रैक तेरी बातें में सोल्जर जिगर मूवी से ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर सो लेम जैम्स का सवाल मैंने पूछा था कि मुझे ऐसे पेड़ का नाम बताएं जो कि रियल नहीं है मैं एक ही आंसर के साथ आई थी यहाँ पे मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल गए हैं सो देर वर एपरेंटली ऑप्शंस एंड संगीता जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग दिनिशा देर कैन बी मेनी आंसर्स टू योर लेम जैम्स क्वेश्चन एंड हियर आर फ्यू एंड द आंसर्स आर केमिस्ट्री ट्रिग्नोमेट्री टेलीमेट्री करेक्ट सही है ये भी जो आंसर मैं लेकर आई थी वो मुझे कुछ लोगों ने भेजा है दैट इज नॉट रियल बट संगीता जी भी पूरी तरह सही है यार एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट मैं कुछ लेकर आती हूँ और मुझे और भी एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाता है सो थैंक यू सो मच इसी बात पे आप डिजर्व करते हैं कमाल के गाने मेरी जान जी बाजीराव मस्तानी से दीवानी मस्तानी एंड देन MP3 से टाइटल ट्रैक ब्यूटीफुल मूवी ब्यूटीफुल ट्रैक इस गाने के लिरिक्स सुन के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मम्मी ने बनवाया ये मेरी
2: तू तकदा नी सानू तकदे जीनू ओ तकदा नी सानू
1: भाई ज़ीशान अली साहब की आवाज में कुछ तो जादू है एनी सॉन्ग ही टचेस टर्न्स इनटू गोल्ड ब्यूटीफुल सोलफुल वॉइस बट फिलहाल पहले हम सुनेंगे विशाल मिश्रा की आवाज में क्यों मजा आ रहा है फ्रॉम द मूवी बंदर ऑन योर रेडियो बिंदास

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा. द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ.
5: जैकी श्रॉफ
4: रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में दीवानी मस्तानी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड यार दीपिका पादुकोण कितनी खूबसूरत लगी थी, मतलब इथीरियल ब्यूटी, बहुत ही प्यारी लग रही थी. एंड प्यारा अभी मुझे वेदर नहीं लग रहा है. जी हाँ, उसी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी. सो यस्टरडे आई वॉज हैप्पी कि चलो इट इज 34 एंड इट फील्स लाइक 34, राइट? तो उसने बोला ऐसे कैसे बेटा, तुम कहाँ खुश हो रही हो, रुको मैं बताता हूँ. टुडे इट इज 35 डिग्रीज एंड इट फील्स लाइक 46 डिग्रीज. व्हाट इज दिस बिहेवियर वेदर? व्हाई वुड यू डू दैट? सो आज के जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 41 जा सकता है, लोएस्ट विल बी 33. और मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया था कि भाई 16, 17 और 18 क्रेजी ह्यूमिडिटी होने वाली है, इसे हेजी और फॉगी सा वेदर होगा. सो विजिबिलिटी जो है वो भी हैम्पर होगी. तो जितने भी लोग यू नो इफ यू आर ड्राइविंग यू नो इन दीज थ्री डेज ऑब्वियसली यू विल, राइट? सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, ज़रा संभल के ड्राइव कीजिएगा, स्पीड ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वक्त से थोड़ा पहले निकल जाते हैं ना. कोशिश करते हैं अपना ख्याल रखना, हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना है वाइल ड्राइविंग. आपको मुझे मैसेज करना है तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ यार, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है. हाँ आई टोल्ड यू कि मुझे पेशेंस की कमी है, पर आई एम वर्किंग ऑन इट, राइट? सो अभी बढ़ रहा है मेरा पेशेंस. आई विल पेशेंटली वेट फॉर योर मैसेज 3311063 पर. बट यू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ड्राइव सेफली मेरी जान, एंड स्टे हाइड्रेटेड, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिलहाल भेज रही हूँ जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास मेरी जान.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 11.3 एफएम दिनेशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है. यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने लॉन्च कर दिया है बैक टू स्कूल 2026-27 कैंपेन. यस, स्कूल्स आर अबाउट टू ओपन. थोड़ा ही वक्त रह गया है और हर जगह बैक टू स्कूल की धूम हो रखी है. एंड ये जो कैंपेन है इट इज़ बेसिकली डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स एंड वाइडर एजुकेशन कम्युनिटी. हमें पता है हर साल होता है. देर विल बी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, एजुकेशनल बूथ्स, फैमिली फोकस्ड इवेंट्स और साथ में मिनिस्ट्री इस बार ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कर रही है फॉर टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स टू प्रिपेयर देम फॉर न्यू अकेडमिक ईयर. और एक और नया इनिशिएटिव लिया गया है विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट स्टेप, जो कि सपोर्ट करेगा अराउंड 10,700 न्यूली एनरोल्ड ग्रेड वन स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्कूल्स. एंड दैट इज़ रियली कूल टू प्रिपेयर देम टू यू नो उनको पहले से टू मेक देम अवेयर व्हाट ऑल विल बी हैपनिंग एंड यू नो थिंग्स विल बी चेंज्ड. तो पहले से अगर चीज़ें पता होती है तो बेहतर होता है उनके लिए, आसान होता है अपना यू नो to make up their mind. Along with that, this will be going on from 15th August se shuru ho chuka hai, September 15th tak chalega. और कुछ एक्टिविटीज़ मिशरा पे भी होने वाली हैं अगस्त 25 से लेकर 27 तक, शाम 4 से रात 9 बजे तक, जिसमें एजुकेशनल, रिक्रिएशनल और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी फैमिलीज़ और चिल्ड्रन दोनों के लिए. और जो एनुअल एजुकेशनल फोरम है वो होगा अगस्त 25 को एट QNCC, जहाँ पे एजुकेशनल लीडर्स आएंगे, टीचर्स, पार्टनर्स सब होंगे. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दिस न्यू अकेडमिक ईयर. एंड बढ़िया है यार. और बैक टू स्कूल की बात करी है तो मुझे भी आपको कुछ बताना है. रजिस्टर करना चाहते हो तो रुको, लौट कराती हूँ फिर बताती हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड जी बिंदास.

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फिर से स्कूल? अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर.

0: You're listening to Radio Ola 106.3 FM. Zeeshan Ali Sahib ki awaaz mein ishq ka wo beautiful gana. और साथ में मैंने आपको कहा था ना बैक टू स्कूल के लिए रजिस्टर करना है तो मैं आके बताती हूँ. तो यस, ध्यान से सुनो मेरी बात. 27th of August हमारी डेट डिसाइड हो चुकी है. आप, हम एंड दोज क्यूटीज, यस, बैक टू स्कूल के लिए मिल रहे हैं अबू सदरा मॉल में. दोपहर 3 से लेकर 7 बजे तक बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, चैलेंजेस होंगे, फन होगा. इट विल बी एपिक, यू नो दैट पार्टी बिफोर द स्कूल स्टार्ट्स, इम्पॉर्टेंट है ब्रो. सो अपने बच्चों को रजिस्टर कीजिए फटाफट से, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जल्द ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे. सो डू नॉट मिस दिस आउट. radioolive.qa इज द वेबसाइट, जाइए वहाँ पर. वहाँ पर आपको बैक टू स्कूल का बैनर मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा. उस फॉर्म को बस फिल कर दीजिए, इतना आपने करना है. अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल पा रहा है, कष्ट हो रहा है, बहुत जाने में आलस आ रहा है, नो वरीज, आई एम हियर, नो फियर, ओके. आओ 3311063 पर मैसेज करो मुझे, आई विल शेयर द वेबसाइट विद यू सो दैट यू कैन रजिस्टर योर किड. जल्दी से कर लो, फिर वक्त निकल जाएगा. तो कहना नहीं कि तनीषा ने बताया नहीं था.
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Hotel.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है. यहाँ पर अरिजीत सिंह की आवाज में मैं रंग शरबतों का ब्यूटीफुल गाना सुना आपने. और दोहा मेट्रो लुसेल ट्राम ने एक सर्विस अपडेट अनाउंस किया है कि जो नया मेट्रो लिंक रूट है M304 वो ऑपरेट करेगा स्पोर्ट्स सिटी से एग्जिट 5 स्टेशन ऑन द गोल्ड लाइन ऑफ दोहा मेट्रो एंड इट विल सर्व एरियाज इन एन खालिद एंड अल सिनीम. और ये जो नया रूट है इसमें 30 स्टॉप्स होंगे. तो अगर आपकी डेस्टिनेशन वही है तो आपके लिए चीजें आसान होने वाली है एंड योर कम्यूट विल बी हैसल फ्री नाउ क्योंकि दिस विल मेक लाइफ इजीयर, है ना. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Cool song.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: तनिषा
1: सुखविंदर सिंह की आवाज में मीनाक्षी मूवी से बहुत ही कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और चलती फिरती डिक्शनरी से मैं यूजुअली वर्ड लेकर आती हूँ लेकिन आज मैं एक फ्रेज लेकर आई हूँ
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: एंड दैट ब्यूटिफुल फ्रेज इज फ्रॉम फ्रेंच एंड द फ्रेज इज सवा आले That is CAVA is sava and ale is ALLER and iska matlab English mein hota hai it will be okay everything will be all right that is what you have to tell yourself jab bhi bahut anxious ho rahe ho stressed ho rahe ho lag raha hai ki yaar cheeze kharab ho gayi hai yaar ab to mere control mein kuch nahi hai just tell yourself sava ale सब ठीक हो जाएगा यार इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस हम फालतू में पैनिक कर लेते हैं यू नो अपने दिमाग में ऐसे 50 टैब्स खोल के केओस मचा देते हैं डोंट डू दैट टू योरसेल्फ यू डू नॉट नीड टू डू दैट समझ रहे हो बात को

एब्सोल्युटली लव दिस ट्रैक यार. और ये जो दूसरा वाला है ये भी बहुत सुंदर है. Well, these two are coming up your way. लेकिन उससे पहले क्लिंटन सेरेज और शंकर महादेवन की आवाज में Hey Ya from the movie Kartik Calling. Kartik only on Radio Olive 106.3 FM. Jio, Bindaas, मेरी जान.

अरिजीत सिंह की आवाज में भेड़िया मूवी से बहुत खूबसूरत गाना अपना बना लिया ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर एंड वी नो अबाउट मिलेनियल्स बूमर्स जेन जी जेन अल्फा बीटा यू नो सब आ रहा है अब धीरे धीरे एंड देर इज दिस छोटू सा ईयर गैप जिसके लिए एक नया टर्म आया है सो पीपल हु वर बॉर्न इन 95 टिल 99 सो 95 से लेकर 99 के बीच में जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं ना वो अपने आप को पूरी तरह से मिलेनियल बोल पाते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरह से जेंजी बोल पाते हैं क्योंकि दोनों के मिलेनियल्स के जो लाइक लिटरली यू नो एंड वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े बहुत देखे हैं जेंजी का एकदम जो न्यू एरा आया है बस थोड़ा सा वो देखा है बाकी दे आर नॉट एबल टू रिलेट सो उन्हें एक नया टर्म दिया गया है एंड इट इज़ कॉल्ड जिलेनियल्स जी हाँ सो पीपल हु आर बॉर्न फ्रॉम 95 टू 99 इसके बीच में उन्हें जिलेनियल्स कहा जाता है यस्टरडे वी वर टॉकिंग टू समबडी इन आर ऑफिस अबाउट दिस कि यू नो अभी जेन जी जेन अल्फा आ गया है नेक्स्ट इज जेन बीटा एंड देन मुझे लगा धीरे धीरे साइन कॉस थीटा भी आने वाला है वी डोंट नो व्हाट एल्स गोना कम बट इट इज गोइंग क्रेजी एंड द स्लैंग्स दे आर यूजिंग Yesterday I talked about Youth Birthday. बाकी और भी अगर आपको Gen Z Lingo जाननी है तो आपको RJ Simran को सुनना पड़ेगा क्योंकि हर रोज़ वो Gen Z decoded करती हैं जहाँ पे वो आपके लिए इनके अजीबो गरीब वर्ड्स को decode करके हमारी आसान भाषा में हमें समझा देती हैं जी हाँ सुनती रहिए रेडियो जियो बिंदास

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी।

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: एजेंट विनोद से नंदनी सरकार की आवाज में दिल मेरा मुफ्त का लॉन्च कर दिया है हायो, अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि रिवॉर्ड करेगा लोगों को फॉर अटेंडिंग स्पोर्ट्स इवेंट. देखो कतर में इतने बढ़िया बढ़िया स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं एंड वी ऑल आर एब्सोल्युटली क्रेजी अबाउट इट, वी गो टू अटेंड. तो उसका थोड़ा और फायदा भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए और ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए. सो आइडिया इज़ वेरी सिंपल, आपने टिकट खरीदनी है, आपने मैच अटेंड करना है, आपने पॉइंट्स अर्न करने हैं उस पर और फिर उन पॉइंट्स के थ्रू आप अपने रिवॉर्ड्स जो है वो रिडीम कर सकते हैं. सो जैसे कि फैंस कैन अर्न 1000 HP, दैट इज हायो पॉइंट्स, एंड जितने लाइक इट इज फॉर पर स्पोर्टिंग इवेंट यू अटेंड. सो एक इवेंट आपने अटेंड किया उसके लिए आपको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे एंड उसके बाद आप जो हैं उन पॉइंट्स के थ्रू मेंबरशिप लेवल्स भी अपने चेंज कर सकते हैं. यू कैन यू नो एक्सचेंज दोज पॉइंट्स फॉर एक्सक्लूसिव ऑफर्स, प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंसेस, फूड और बेवरेजेस में यूज़ कर सकते हैं, रिटेल के लिए, टेलीकॉम, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, होटल्स एंड ऑटोमोटिव सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है ये. सो इट इज़ रियली कूल, फटाफट से यू नो इसका फ़ायदा उठाइए. नेक्स्ट जो भी स्पोर्टिंग इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं यू शुड मेक श्योर कि आप उसमें पॉइंट्स जीते, ठीक है. एंड यंग पीपल एज बिटवीन 12 to 17 कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट पेरेंटल और गार्डियन के कंसेंट के साथ. एंड आप अपने जो इवेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, मेंबरशिप टीयर है और जो भी रिवॉर्ड्स अवेलेबल है वो सब कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे. सो इट इज़ रियली कूल यार, बेसिकली वॉचिंग स्पोर्ट्स विल टर्न इन टू अ लॉयल्टी प्रोग्राम नाउ. तो मतलब आप वो गेम देखकर मजे भी लो, ऐश भी करो और फिर आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा है. तो भाई ये तो सोने पे सुहागा टाइप्स की बात हो गई है ना. सेंडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक मुसाफिर कैफे से काफी है. स्टे ट्यून्ड एंड जय विंदास.

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलविदा।

0: तनिषा।
1: कमाल खान की आवाज में ओ ओ जाने जाना फ्रॉम द मूवी प्यार किया तो डरना क्या। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं। अंबर टिकटॉक टिकटॉक में हम बात करते हैं गूगल की। सो गूगल ने कहा था कि हम एक एआई स्टूडियो ऐप लेकर आ रहे हैं और उसके प्री ऑर्डर्स ऑन है, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया फीचर्स थे, सो पीपल वर एक्साइटेड अबाउट इट। 800,000 प्री ऑर्डर्स हो गए उस ऐप के लॉन्च के पहले ही। नाउ 800,000 पीपल आर सेइंग कि यस हमें ये ऐप चाहिए, इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, इसमें कमाल कमाल के फीचर्स हैं। पर लॉन्च के एक दिन पहले गूगल ने बोला नेवर माइंड, वी आर नॉट गोना लॉन्च इट, एंड एवरीबडी वेंट क्रेजी। देन शांत करने के लिए उन्होंने लोगों को बताया कि भाई हमने ये सारे फीचर्स जेमिनाई में ही डाल दिए हैं, सो दैट आपको एक और ऐप अलग से डाउनलोड ना करनी पड़े, आप ही के लिए चीज़ें आसान करी है। बट क्रेजी ना, पीपल वर लाइक ओके फाइन वी विल डाउनलोड, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट गूगल वाज लाइक नो, माई ऐप माई फीचर्स माई रूल्स बेसिकली। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से हमें कम ए आई की ज़रूरत है यार, ये और नया नया क्यों लेकर आते जा रहे हैं, हम इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं अपनी क्रिएटिविटी में और यू नो थिंकिंग कैपेसिटी में, क्योंकि सब काम ए आई से कराया जा रहा है। जो भी थिंकिंग और क्रिएटिविटी वाला काम है वो तो बेसिकली कराया ही जा रहा है, लाइक एक प्रॉम्प्ट डाल दो वो आपको 50 आइडियाज़ दे देता है, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ ऐड ऑन कर रहे हो नो बिग डील राइट, बट स्टिल आप हैंडीकैप तो फील करोगे नेक्स्ट टाइम क्योंकि आदत हो गई है। एंड इट इज़ अ रियली सैड रियलिटी, वी डेस्परेटली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम तो खुद यूज कर रहे हैं आई।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ओलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
0: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि बैक टू स्कूल इज बैक. यस, 27th ऑफ ऑगस्ट को अबू सिद्रा मॉल में हम मिलने वाले हैं और इसके लिए अपने बच्चों को रजिस्टर करवा दीजिए. आई गॉट अ क्वेरी ओवर हियर. मुझे मैसेज किया था राजदा जी ने कि मैंने अब रजिस्टर करवा दिया है एंड आई हैवन गॉट एनी अपडेट. आप उस रजिस्ट्रेशन को एज गुड एज कॉन्फर्मेशन ही समझिए. रेस्ट वी विल टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस. अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं, कुछ वक्त के बाद वो क्लोज हो जाएंगे एंड वंस दे आर क्लोज्ड देन यू विल बी इन्फॉर्म्ड. एंड फटाफट से जाइए हमारी वेबसाइट दैट इज olive.qa. वहां पर जाकर आपको बैनर दिखेगा बैक टू स्कूल का, उस पर क्लिक करना है, फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिल करने का है. That's it. Then chill करिए क्योंकि सब plan ready है. बहुत सारे games होंगे, fun होगा, challenges होंगे and a lot of things have been planned for you and the kids. So it'll be yay exciting. So 3 to 7 PM तक का वक्त है, 27th of August, अबू सिद्रा मॉल में. सुनते रहिए Radio 106.3 FM. जियो बिंदास.
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
4: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At the

जबरिया जोड़ी से खड़के गिलासी only on Radio 106.3 FM दिनेश आप के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर and it is almost 9:50 तो you know मेरे जाने का वक्त हो गया. अब मिलेंगे हम कल सुबह 6 बजे. पर आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, ठीक है. स्टे हाइड्रेटेड, ईट लाइट फूड और फ्रूट्स खाइए और कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो भर भर की सनस्क्रीन लगा लो. बस अपना ख्याल रखो, ठीक है, समझ रहे हो बात को. हाँ जी, बाकी अभी कशिश आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए. एंड इफ़ यू हैवंट येट, जल्दी से जाओ radio.qa पर, वहाँ पर जाकर अपने बच्चों को रजिस्टर कर दो फॉर बैक टू स्कूल. एंड radio.qa पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए अगर नहीं किया है तो. ऑल्सो डिटेल्स आपको बैक टू स्कूल की वहाँ पर भी मिल जाएंगी. देर आर सम वीडियोज विच हैव बीन पोस्टेड, कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं तो जाइए चेकआउट कीजिए यार. कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप ही के लिए पोस्ट कर रहे हैं ना, तो आप तक पहुँचना तो ज़रूरी है. हाँ जी, बाकी सब बढ़िया है. लेट्स टेक इट वन डे एट अ टाइम. स्ट्रेस नहीं लेना है कुछ भी चीज़ें इधर उधर हुई तो, क्योंकि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरी जान. आप बस अपना ख्याल रखिए और ये याद रखिए कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

फिर से एक और बहुत ही बढ़िया वाले गाने से जो है हमने शुरुआत कर दी है अपने शो की। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, बहुत हिम्मत लगती है जब आप रात को 12-1 बजे सो और सुबह आपको ऑफिस के लिए उठना हो, मतलब पूरी एनर्जी आपको सिर्फ बेड से उठने में लगानी पड़ती है। मैं अपना अलार्म जो है एटलीस्ट 4 से 5 बार बंद करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, लेकिन फिर खुद मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि अब बहुत देर हो गई, अब तो उठना ही पड़ेगा। फिर बस आप लोगों का प्यार है जो मुझे उठा के ले आता है कि यार देखो कशिश आए क्यों है इतनी दूर घर से, काम करने आए हैं, इतने प्यारे लोगों से बातचीत करने आए हैं। सो बस मेरे इसी संघर्ष के लिए, मेरे इसी डेडिकेशन के लिए जो है फोन उठाइए 3311063 पर, मुझे जो है कुछ ना कुछ मैसेज कर दीजिए यार। गुड मॉर्निंग लिख दीजिए, हाय लिख दीजिए, हेलो लिख दीजिए, थैंक यू लिख दीजिए मेरे यहाँ आने के लिए। बाकी आज बहुत सारी बातचीत जो है वो हम करने वाले हैं, बहुत सारी स्पेशल चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं। बॉलीवुड की गपशप करेंगे, हेल्थ के बारे में बातचीत करेंगे, आपके स्ट्रेस को भी थोड़ा कम करूंगी मैं, और बाकी ऐसे ही बातचीत जो है जारी रखेंगे। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पे, तो वॉल्यूम बढ़ाओ और ये गाना एंजॉय करो। बाकी थोड़ी सी देर में लौट के आती हूँ मैं, तो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कह दे रहो जियो बिंदास।

0: 106.3 FM, Gio Bindas.
1: Time check.
2: Brought to you by
1: Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:14. दैट इज 10:14. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
4: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
5: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
4: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
5: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा. द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप.
6: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है. रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश. अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक. वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल. किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है. तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है. अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है. स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर. मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में. वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
7: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
6: एंड
7: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस.
6: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
7: कॉल 7022525.
6: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
8: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: ज्यादा लोग मेरी इस बात से अग्री नहीं करते हैं, लेकिन सुई धागा मूवी जो है वो सच में बहुत अच्छी मूवी है। एंड आप अनुष्का शर्मा का जितना भी मजाक उड़ा लो, जितनी नेचुरल एक्टिंग उन्होंने इस मूवी में किया, मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्ट्रेस, मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस जो है वो ये कर पाती। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आज जब मैंने जो है अपने विला से बाहर कदम उठाया तो मुझे ऐसा लगा आसमान देख के कि यार बारिश होने वाली है क्या, लेकिन फिर मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, सिर्फ ह्यूमिडिटी ही ह्यूमिडिटी है, नो सनलाइट, सिर्फ ह्यूमिडिटी थी। अभी मुझे नहीं पता कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, आप लोग ही मेरी आंखें बन के मुझे फोटो भेज सकते हैं। तो 3311063 पर जल्दी से फोन उठाइए एंड व्हाट्सएप कर दीजिए कि इस वक्त भी बदली छाई हुई है, क्या बादल छाए हुए हैं या फिर अब जो सूरज चाचू है वो आ चुके हैं। वैसे आज जो है मोस्टली सनी ही रहने वाला है, ऐसा मेरा जो है गूगल कह रहा है। एंड 39 डिग्री सेल्सियस इस वक्त करंट टेम्परेचर दोहा में है, 40 डिग्री सेल्सियस आज का हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, ह्यूमिडिटी तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली होने वाली है। सो ह्यूमिडिटी से बच के रहिए, आज ज़्यादा ह्यूमिडिटी है एंड बाकी पानी पीते रहिए और सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, भले ही सूरज की थोड़ी इंटेंसिटी कम है लेकिन हार्मफुल यूवी रेस से आपको बचना जरूर है, तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल इस हीट को बीच करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी मौसम के बारे में डिटेल में बात अभी करनी बाकी, आप फोटोज भेजो यार मुझे।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

पजामा काला का तो नहीं पता, लेकिन शर्ट काली काली मैं पहनकर आ गई हूँ। लेकिन उसे मैंने पेयर किया है एक ट्रेडिशनल चोकर नेकलेस के साथ, जो कि मैं इंडिया में बहुत करती थी, लेकिन कतर में आज मैंने पहली बार ट्राई किया है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल चुकी हूँ, देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि कशिश अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आज इंस्टाग्राम स्क्रोल करते करते जब मैं हमारी मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की पोस्ट पर पहुंची, तो उसमें ये लिखा था कि अभी अगले 3 दिन जो है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल होने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो जितना ज़्यादा आप ऑफिस के, घर के, कार के अंदर रहें उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाहर जाना अवॉइड कीजिए एंड मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगे वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ह्यूमिडिटी जब होती है तो ऑल एंड ऑल जो है ना सांस लेने में भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मिक्स हो जाती है। सो अगर आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है सो आप ह्यूमिडिटी में थोड़ा सा जाना अवॉइड कर सकते हैं, तो आगे के 3 दिन थोड़े से डिस्कम्फर्ट वाले बीत सकते हैं। बाकी मैंने आज आपसे यही पूछा था कि यार मैं तो देखो सुबह सुबह देख कर आई थी कि सूरज चाचू थे नहीं, मेरा गूगल बता रहा है कि मोस्टली सनी रहने वाला है, तो इस वक्त बाहर का क्या माहौल है। सो मुझे जो है अहमद जी ने, मकूद अहमद जी ने जो है एक फ़ोटो भेजी है जिसमें मुझे ज़्यादा सन दिख नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि उनका टिंटेड ग्लास है इस वजह से ऐसा है या सच में ही नहीं है। सो ये उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी है एंड इससे थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आ रहा है कि ज़्यादा बदलाव आया नहीं है इस वक्त मौसम में। एंड मुझे मोहम्मद यूसुफ खान जी ने कहा है, हेलो कशिश, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एंड आज मंडे मॉर्निंग की शुरुआत जो है हमने कर ली है। एंड इनका मैसेज एक भी है कि कशिश अभी बारिश का कोई चांस नहीं है, ये अगस्त में ह्यूमिडिटी अगले लेवल पर रहेगी, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स थोड़ा सुकून मिलेगा। देखिए मैं जो है ये सोच के आई थी कि अगस्त मेरा बर्थडे मंथ होता है तो थोड़ा सुकून यहाँ पर मुझे मिलेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत बारिश हो रही होती है तो मुझे कभी भी पसंद नहीं थी बारिश इतनी ज़्यादा, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी हो जाती तो अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं यार, जहाँ पर रहते हैं हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। एंड रहमान जी ने मुझे एक ऑडियो नोट जो है वो भेजा है जो मैंने पूरा सुना, और उनका ये कहना था कि कशिश आपको लगते होंगे 4 अलार्म, मुझे जो है यहाँ पे मतलब 25 ईयर्स हो गए कतर में एंड मुझे आज तक अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे तो आता भी नहीं अलार्म लगाना। वेरी नाइस जी, मैं बस आप ही की इस राह में चलने की कोशिश करूंगी। रहमान जी थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग। लियाकत जी ने भी गुड मॉर्निंग कहा है, नस्मा जी ने भी कहा है गुड मॉर्निंग कशिश, यू हैव द पावर टू मेक टुडे इनक्रेडिबल, गुड वर्क डियर, थैंक यू सो मच। बस आपके इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए ही तो देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ एंड सुबह सुबह उठकर एफर्ट डालकर यहाँ पर आती हूँ। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाओ, नमस्ते लंदन से ये गाना इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ। स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: फर्स्ट क्लास गाना आपने सुन लिया यहाँ पर। अब देखिए यार, काफी सारी बातचीत ऐसी है जो हमारी हमेशा अधूरी रह जाती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस की। अब स्ट्रेस जो है वो ऐसे अपने आप अचानक से तो आ नहीं जाता है कि यार चलो आज फ्री हूँ तो आज आ जाता हूँ। स्ट्रेस तब आता है जब आप काम का ज्यादा लोड लेने लग जाते हो या चीजों को ज्यादा जो है सोचने लग जाते हो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए जो है हम बातचीत करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं। अब देखो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, स्ट्रेस अगर आपको कम करना है तो आपको चीज़ों के बारे में कम सोचना है। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो या जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ है जिसके लिए जो है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है या मैं बहुत दिमाग लगाने वाला हूँ, तो उस चीज़ के बारे में सोचना आपको बंद कर देना। अब आप ये बोलेंगे कशिश ये तो आपने बिल्कुल हमारे दोस्तों जैसी बात कर दी, वो भी यही बोलते हैं कि तू ज़्यादा सोच मत इस बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसे सोचने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको उस वक्त जो है अपना माइंड डाइवर्ट करना है। एंड अगर आप माइंड डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं तो जल्दी से अपने आप को 3 मिनट देने हैं और उन 3 मिनट में अपनी जो पूरी प्रॉब्लम है वो आपको एक जगह लिख देनी है। काफ़ी सारी जगहों पर ये कहा गया है, रिसर्च पर ये पता चला है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं इसका मतलब आप अपनी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, अब आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बस 3 मिनट अपने आप को दीजिए। 3 मिनट जो है वो ज़्यादा वक्त भी नहीं होता और ज़्यादा कम वक्त भी नहीं होता है। सो आप अपने आप को 3 मिनट दीजिए एंड उन 3 मिनट में जो है अपनी पूरी प्रॉब्लम को लिख दीजिए एंड उसके बाद उसको जो है उसका प्लेन बनाइए एंड उसका प्लेन बना के उड़ा दीजिए। ऐसी जगह उड़ाइएगा जहाँ किसी को पता ना चले, वरना कोई जो है उठा के प्लेन आपकी प्रॉब्लम पड़ भी सकता है। सो इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो 3 मिनट में अपनी सारी प्रॉब्लम को फोकस कर देगा एंड उसके बाद आपको हल्का फील होगा एंड उसके बाद आप जो है नहीं सोचेंगे ज़्यादा इसके बारे में। मुझे नहीं पता है, मैंने जो है अभी तक ये ट्राई नहीं किया है, अगर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं मेरे लिए तो प्लीज़ ट्राई करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है के रेडियो सेट्स पर, ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर है, गाने का नाम जो है क्या कमाल है, मैं वापस आऊंगा से। मैं वापस आऊंगा, देखो जिन लोगों ने थिएटर में देखी थी ना उन लोगों ने तो काफी एंजॉय किया ही, रोते हुए बाहर निकले हैं, वीडियोस वायरल हो रही थी कि काफी एजेड लोग जो है वो साथ में देखने के लिए जा रहे हैं ये मूवी। लेकिन जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आई, जब ये OTT पे आई, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इफेक्ट थोड़े अलग से हैं। मतलब लोग जो है रिवाइंड करके काफी सारे पार्ट्स देख रहे हैं, काफी माइन्यूट डिटेल्स जो है उन्हें नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े स्क्रीन पे क्या होता है कि कभी चीजें निकल गई तो वो निकल गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन आप जब अपने पास अपने डिवाइस पे देख रहे होते हो ना, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बैक जाकर देख सकते हो, आप जूम करके देख सकते हो। सो कई बार जो डिटेल्स हैं जैसे चांद बाली वाली डिटेल हो गई या ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं ना अब सोशल मीडिया पे। मैं वापस आऊँगा का एक नया रूप जो है, एक नया एस्पेक्ट जो है वो दिख रहा है। जैसे स्पेशली अगर मैं कपड़ों की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि यार जो कपड़े थे वो उस टाइम के हिसाब से नहीं बनाए गए, बल्कि ड्रीमी बनाने के लिए और एस्थेटिक बनाने के लिए जो है वो किए गए। इस पर हम डिटेल में खैर बात करेंगे आगे, फिलहाल आप इस मूवी का एक बहुत ही अमेजिंग गाना दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में इंजॉय कीजिए और बाकी लौट के आइए, फिर थोड़ी सी अपडेट दे देंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है। स्टे ट्यून्ड, मैं हूँ आपकी कशिश और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Song of the Year. Yeah, guys.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: दानातल पहाड़ दी अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुकवाकिफ अलखोर।
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 11:10, दैट इज 11:10। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
4: ओह नो, फिर से स्कूल।
5: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
6: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
5: एंड
6: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
5: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
6: कॉल 7022525।
5: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
7: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
5: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. As

0: सावन की घटा आएगी तो हटेगी ना यार, यहाँ तो ह्यूमिडिटी ही कम नहीं हो पा रही है।
1: वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जब हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि ओ माय गॉड ये लोग तैयार होकर सब्जी लेने जा रहे हैं, ये लोग तैयार होकर जो है बस दो कदम पे कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि यार हम तो ऑफिस भी तैयार होकर नहीं आ पा रहे। मैं सच बता रही हूँ, मैं ना जब मतलब घर पे थी इंडिया पे, जब मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करने होते थे, चाय मम्मी मुझे दे देती थी, नाश्ता मम्मी मुझे दे देती थी, तब मुझे सिर्फ तैयार होना होता था सुबह उठकर, तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होती थी। लेकिन अब यहाँ पर कतर में जब मुझे चाय भी खुद ही बनानी है, लंच भी खुद ही पैक करना है, ऊपर से लेट भी नहीं होना है क्योंकि ऐसा भी नहीं कि अपनी गाड़ी से जाना है, सबके साथ जाना है ना, तो क्या होता है कि आपको कई बार ऐसे होता है कि यार आज जो मिल रही है पहली चीज़ वो पहन लो। रात को अगर मैंने कोई आउटफिट सिलेक्ट करके रखा है तो मैं वो कभी नहीं पहनती सुबह, मुझे वो सुबह पहनने के बाद अच्छा ही नहीं लगता, चाहे मैं कितना भी एक घंटे दो घंटे उस पर दिमाग लगा कर पूरा आउटफिट पहन पहन कर रात को देखूँ, उसे आयन करके रखूँ, एंड सुबह मेरा मन ही नहीं करता उसको पहनने का, पता नहीं क्यों। एंड वहीं पर दूसरे तरफ लोग जो है इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपना एयरपोर्ट लुक बना रहे हैं, मतलब ये ट्रैवल करने के लिए जो है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, कम्फी जो है किस तरीके से कंफर्ट जो है उसको फैशन के साथ मर्ज कर सके वो देख रहे हैं। पता है पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले प्लेन में बैठने के लिए स्पेशली लोग सूट पहना करते थे, सूट मतलब सूट बूट टाई एंड पूरा ड्रेसअप होते थे एंड फिर प्लेन में बैठा करते थे, वो कल्चर था। और अब लोग क्या करते हैं कि अब वो कम्फी अपने जो नाइट सूट जो पजामाज होते हैं उनमें चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पजामा कुछ भी पहन लिया कि ब्लैक कलर लोअर और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के चले गए, नहीं, अब पूरे सेट पूरा जो है पजामा सेट पहनकर जो है एयरपोर्ट पे जाया जाता है। इसी से परेशान होने के बाद ये जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने देखा तो कुछ कंट्रीज की एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने ये कह दिया कि यार हमारे यहाँ जो है हम पजामास को जो है पहन के ट्रैवल नहीं करने देंगे, आप अच्छे से ड्रेस होकर आइए। कुछ लोगों का OOTD है वो, कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद 3 घंटे वीडियो बनाने के बाद जो है वो नाइट सूट पहना है, वो नाइट सूट जो है कई लोगों के आउटफिट से महंगा है। आप बताइए मुझे क्या ये एयरपोर्ट लुक सच में एक चीज़ है या बस ये इंस्टाग्राम का एक भ्रम है? क्या आपको लगता है कि ट्रैवल करते हुए हमें कंफर्ट देखना चाहिए या स्टाइल देखना चाहिए? आप क्या देखते हैं बताइए मुझे 3311063 पर। इतना मेरे कहने के बाद, इतना डिस्कशन करने के बाद, अपना ओपिनियन देने के बाद, अब आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ मैं कि आप ट्रैवल करते हुए स्पेशली एयरपोर्ट पर जब जाते हैं तो आप कम्फर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं या आप स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बताइए मुझे। कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है फिलहाल आपके रेडियो सेट्स पर, शाम शानदार गाने का नाम है, शानदार मूवी से ये ट्रैक है, अभी त्रिवेदी की आवाज में है, सो इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

लव में ऐसा क्यों होता है ये तो नहीं पता, लेकिन एयरपोर्ट पे ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल कर रहा है इंटरनेट इस वक्त। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलिफ बर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइव मैसेज, आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, इंटरनेट पे ये डिबेट शुरू हो गई है जहाँ पर एक फोटो जो है, जहाँ पर मतलब लोग जो है चेक इन काउंटर जो है उस पर सब लोग अपने नाइट सूट यानी अपने पजामाज में जो है वो पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पे, एंड वो फोटो पोस्ट करने के बाद किसी ने पूछा है कि भाई हमने कब डिसाइड किया ये कि हम सब जो है नाइट सूट को ट्रैवल अटायर की तरह जो है कंसिडर करने लग जाएंगे। मतलब नाइट सूट जो है वो रात में पहना जाता है, वो सोते वक्त पहना जाता है, वो एयरपोर्ट पे पहनने वाली चीज तो नहीं है। पहले आपने एयरपोर्ट आउटफिट बनाए, फिर उसको कंफर्टेबल किया एंड उसके बाद जो है आप नाइट सूट पे आ गए हो, ये लोगों का कहना है, जो फोटो जिसने पोस्ट किया उसका कहना है। एंड फिर उनके सपोर्ट पे लोग आ गए कि हाँ 70s में हुआ करता था जब लोग जो है पूरी तरीके से ड्रेसअप हुआ करते थे, जैसे वो पार्टी में जाने के लिए ड्रेसअप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्लेन में बैठने के लिए ड्रेसअप किया करते थे, लेकिन आजकल जो है ऐसा नहीं होता है। तो अब ये तो होगा जो इनका जो है साथ दे रहे थे, लेकिन जो इनके अगेंस्ट में थे वो भी बोलने लग गए कि यार देखो इतनी लंबी ट्रैवल पे आप क्या चाहते हैं कि हम पूरा ऐसे तैयार होकर प्लेन में बैठे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी मैंने आप लोगों से भी यही सवाल किया था कि आप ट्रैवल करते हुए क्या प्रेफर करते हो, कम्फर्ट या फिर फैशन। बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया है एंड इसमें मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि कशिश देखो यार, हम तो कंफर्ट जो है उसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ऐसा किसने कहा कि कंफर्ट जो है वो अच्छा नहीं दिख सकता। कंफर्टेबल कपड़े, लेकिन प्रेजेंटेबल कपड़े पहनना इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाइट सूट पहनकर जो है जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, अननेसेसरी अंटिल आपने बहुत ही लास्ट मिनट फ्लाइट जो है वो बुक ना की हो कि आप सीधे ही बेड से उठकर ही चले गए हैं या आपको जो है बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला कपड़े चेंज करने का, दैट्स ओके। पर आपको अप्रोप्रिएट कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। देखिए फेयर इनफ, मैं अग्री करती हूँ मेरे लिसनर्स के साथ, बाकी इंटरनेट पे ही डिबेट चल रही है। अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखे तो उस पे जाकर आप ज़रूर अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। फिलहाल लिसनर्स ने मुझे क्या कहा है मैं वो पूछती हूँ। तो अभी मैं कुछ देर पहले अपने बर्थडे की बात कर रही थी, सो मोहम्मद यूसुफ खान जी ने कहा है कि कशिश पूरे बड़े बड़े लेजेंड्स का जो है अगस्त में बर्थडे होता है। ऑफकोर्स क्यों नहीं, मतलब इससे ज़्यादा मैं और किसी बात पर अग्री नहीं कर सकती। मोहम्मद अब्बास जी ने जो है मुझे रोड की फ़ोटो भेजी है जहाँ पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो दिखाई दे रही है, ठीक है, तो देखो कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। एंड बदली भी दिख रही है, सूरज एकदम से नहीं चमक रहा है। सो जैसा सुबह मुझे मौसम दिख रहा था बिल्कुल उसी तरीके का मौसम है। एंड मकसूद अहमद जी ने एक वीडियो भी मुझे भेजा है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि यार वो शायद यूवी शील्ड है उस वजह से पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कि मौसम कैसा है, तो उन्होंने एक वीडियो भेजा है। थैंक यू सो मच, आप लोग तो मेरी आंखें हैं, मतलब आप लोगों के वजह से मैं बाहर का जो मौसम है, बाहर का जो माहौल है वो सब देख पाती हूँ। स्टूडियो में बैठे बैठे वरना कहाँ बाहर का कुछ पता चलता है, यहाँ पे बैठे बैठे तो पता ही नहीं चलता कि रात हो रहा है या दिन हो रही है। फिलहाल देखिए किस्मत कनेक्शन मूवी से एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर आतिफ असलम और अलका याग्निक जी की आवाज़ में, तो वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश थोड़ी सी देर में आ रही है आपके लिए एक अमेजिंग वाला मूवी रिकमेंडेशन लेकर, बहुत ही फन मूवी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ। जियो बिंदास।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में अनप्लग्ड वर्जन कबीरा का सुना आपने ऑन 106.3 रेडियो। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, एक मूवी अगर अच्छी मिल जाए देखने के लिए तो फिर दिन बन जाता है ना, और अगर रात में देख रहे हैं तो रात बन जाती है और वीकेंड पे देख रहे हैं तो वीकेंड बन जाता है। सो बस इन्हीं मेरी कुछ उल जरूर बातों के साथ मैं आपको एक उल जरूर फिल्म जो है वो रिकमेंड करने के लिए आ चुकी हूँ। अब देखिए यार, क्या होता है ना कि कई बार हम सीरियस मूवीज, प्योर सिनेमा देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जो स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज है ना वो देखते ही नहीं है। वैसे ये जो अगली मूवी है स्लाइस ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन एक फुल ऑन यशराज फिल्म्स मसाला मूवी है। सो मूवी का नाम है दिल बोले हड़प्पा, 2009 की मूवी है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लगी है रानी मुखर्जी इस मूवी में, एंड उनका जो ड्रेसिंग सेंस है अमेजिंग है। मतलब अभी इस टाइम पे जो चटपटे कपड़े जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं ना, वो उस टाइम पे उन्होंने पहने थे, 2009 में उन्होंने पहने थे। सो यशराज फिल्म्स की ये मसाला मूवी जो है, ये हॉलीवुड की एक फिल्म है, उसका उससे इंस्पायर्ड आप इसे कह सकते हैं। शेक्सपियर की एक नॉवल है, उससे भी इंस्पायर्ड आप इसे कह सकते हैं। मूवी की कहानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों के अराउंड जो है वो घूमती है कि किस तरीके से एक लड़का जो है वो फॉरेन से आता है एंड अपनी कंट्री, अपने रूट्स में जो है घुलने मिलने की कोशिश करता है। वहीं पे ये जो लड़की है, ये जो अपनी ये जो बहुत रूटेड है, वो उसे चेंज करने में किस तरीके से हेल्प करती है। गाने अमेजिंग है, डांस एंड वॉट नॉट, एंड इसमें तड़का लगा देता है क्रिकेट। सो अगर आप क्रिकेट फैन हैं, बॉलीवुड फैन हैं, गाने आपको बहुत पसंद है, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। रानी मुखर्जी की एनर्जी एपिक है, शाहिद कपूर का चार्म अमेजिंग है, एंड म्यूजिक और डांस प्रीतम जी का है। ऑफकोर्स म्यूजिक तो फिर अच्छा होना ही है। सो बस वाइब और कलर्स के साथ मैं तो इस मूवी को सॉलिड 5 में से 3.5 या 4 जो है वो देना चाहूंगी। बाकी माइनस पॉइंट्स भी हैं, मतलब आपको पता है कि मूवी में क्या होने वाला, ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है बहुत मूवी। थोड़ी सी लॉजिक की भी कमी आपको लगेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट में लॉजिक कहाँ देखा जाता है। उसके बाद थोड़े से ओवर द टॉक डायलॉग्स भी आपको मिलेंगे कि यार भाई ये तो ऐसे कोई बात नहीं करता असल में, लेकिन यशराज फिल्म्स की मूवी है, ऑफकोर्स ये नॉर्मली बात कर ही नहीं सकते। और कुछ बॉलीवुड स्टीरियोटाइप्स जो है उस पर भी ये मूवी है, बट सॉलिड एंटरटेनमेंट जो है वो इस मूवी में आपको मिलेगा, तो आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। मूवी का नाम दिल बोले हड़प्पा है, आपको OTT पे ये मूवी मिल जाएगी, एंड जाके एक बार देखो। और बाकी आपके पास अगर कोई मूवी रिकमेंडेशन है कि कशिश मैंने ना ये वाली मूवी देखी है, एक बार जो है आप देखिए एंड बाकी सबको भी रिकमेंड कीजिए, तो मैं बिल्कुल सबको बताऊँगी। 3311063 इज द नंबर। आइए जल्दी से अपनी फेवरेट मूवी जो है वो मुझे बता दीजिए, मैं उसे देख कर फिर रिव्यू करने वाली हूँ। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंड आप सबके मैसेजेस पढ़ने के बाद जो मेरा रिएक्शन होता है, बस वही अगले गाने का नाम है। गाने का नाम है वाओ। सो इस गाने को एंजॉय करके आओ, मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना। Say what?

सुखी का ये गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कसुशन, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, आपने भी बचपन में ये जरूर जो है सोचा होगा ना कि यार हमारे जो फेवरेट एक्टर्स हैं ये रहते कहाँ हैं, ये जो है जो सीरियल में दिख रहे हैं यही कैरेक्टर है, इनका घर यही होगा। सो काफ़ी सारे जो टीवी शोज आते थे उसमें जो घर होता था वो बिल्कुल सेम होता था, क्योंकि शूटिंग जो है वो एक सेट पे हो रही है ना, और वो सेट का घर सेम होता था, तो दो तीन सीरियल्स में सेम होता था। तो मुझे ऐसा सच में लगता था कि यार कहीं ये जो मिहिर है, ये जो है ये अक्षरा का घर, मिहिर का घर, सबका घर सेम क्यों है। एंड मूवीज़ में भी ऐसा होता है, आपने अगर सलमान खान की चोरी चोरी चुपके चुपके देखी है, तो वो मूवी, बॉबी देओल की बहुत सारी मूवी, उसमें एक होटल है एंड वो होटल बिल्कुल सेम है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये वाला ही तो ये लोग क्या साथ में रहते हैं क्या, ये लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या, ये लोग एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। एंड वरुण धवन ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था, और मुझे भी ऐसा ही लगता था बहुत लंबे टाइम तक, कि काजोल और शाहरुख खान जो है ये लोग साथ में रहते हैं, बिकॉज इनकी शादी हुई, ये कपल है। गौरी खान के बारे में नहीं पता था, तो जैसे ही वरुण धवन एक दिन शाहरुख खान के घर गए किसी काम से, सो उन्होंने, गौरी जी ने दरवाज़ा खोला एंड उन्होंने बोला कि काजोल कहाँ है, आप कौन हो। सो ये हो जाता है जब हम हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में जब बचपन में सोचते हैं। सो ऐसे ही ना स्पाइडरमैन वर्ल्ड वाइड जो है सबका फेवरेट है, ऑफकोर्स मेरा भी फेवरेट है, हर छोटे बच्चे का फेवरेट है, हर बड़े इंसान का फेवरेट है। स्पेशली अभी ब्रांड न्यू डे के चलते हमने देख ही लिया कि कितने लोग जो है वो कितने बड़े बड़े फैन हैं स्पाइडरमैन के। सो उसी के चलते एक न्यूज़ जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हो रही थी, जिसमें बच्चे जो है वो जो घर दिखाया गया है स्पाइडरमैन में, वहाँ पर जो है उस घर के एड्रेस पे हैंड रिटन लेटर्स जो है वो स्पाइडरमैन के लिए भेजते हैं। एंड एक 64 ईयर ओल्ड अंकल जी जो है वो वहाँ पर रहते हैं एंड उनको वो लेटर्स मिलते हैं, एंड उन अंकल जी को कोई आइडिया नहीं था कि वो जो घर खरीद रहे हैं, जो उन्होंने अभी रिसेंटली घर खरीदा है, इसका कोई एक कनेक्शन है स्पाइडरमैन से। सो अब जो बच्चों के प्यारे प्यारे लेटर्स आते हैं, हैंड रिटन लेटर्स, पेंटिंग्स, क्रियॉन से बनाई हुई ड्राइंग्स, वो सब जो है वो रिसीव करते हैं, एंड उनको बहुत मन करता है कि यार मैं स्पाइडरमैन बनकर जो है इनका रिस्पॉन्ड जो है वो कर दूं। सो इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट करके सबको बताया कि मार्वल वालों प्लीज़ इन बच्चों को जो है या तो सही एड्रेस दे दो, क्योंकि स्पाइडरमैन तक ये लेटर्स पहुँचने चाहिए। फिलहाल मैं वापस आऊँगा मूवीज से, मस्त कारा गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इन्जॉय कीजिए, एंड आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Time check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:12. दैट इज 12:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: आदम असलम की आवाज में नमस्ते लंदन मूवी से तेरे लिए गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर। अब देखिए यार, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है जो है वो लेकर आ गई हूँ। एंड अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी एक कजिन का फोन आया था जो कतर में रहती है, लेकिन अभी समर वेकेशन चल रहे थे तो अपने किड्स के साथ वो इंडिया गई हुई थी। एंड उन्हें वो जो बच्चे हैं ना वो हमेशा से कतर में ही रहे हुए हैं, तो उन्हें कतर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैंने वीडियो कॉल पर उन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो है कतर की बहुत याद आ रही है, हमें कतर आना है लेकिन स्कूल जाना पड़ेगा, ये सोच के जो है उन्हें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार स्कूल जाना पड़ जाएगा, मतलब कतर तो जाना है, वहाँ फ़न है, वहाँ मज़ा आता है, लेकिन पर स्कूल नहीं जाना है, स्कूल अभी ऐसा लग रहा है कि समर वेकेशन इन्जॉय ही नहीं करी है। तो फिर मैंने उन्हें बताया और जो उन्हें बताया वही आपको भी बताऊंगी, क्योंकि वो मेरी फैमिली है तो क्या हुआ, आप भी तो मेरी फैमिली हो। सो समर वेकेशन खत्म होने से पहले जो है एक फन इवेंट जो है वो जरूर करना चाहिए एंड करना ही था। सो रेडियो ऑलिव जो है वो आपके लिए लेकर आ रहा है बैक टू स्कूल बैश अबू सिद्रा मॉल में इस 27 अगस्त को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अब वहां पे क्या होगा आप ये पूछेंगे, तो देखो यार एपिक गेम्स होने वाले, क्रेजी चैलेंजेस होने वाले और नॉन स्टॉप धमाल होने वाला है। सो स्कूल जो है शुरू होने से पहले एक बार एक पार्टी एक बैश तो बनता है। सो अपने बच्चों को जो है आप जल्दी से रजिस्टर कर सकते हैं एंट्री के लिए, बस आपको olive.qa पर जाकर बैक टू स्कूल जो है उस पर क्लिक करके जो एक फॉर्म है उसे फिल करना है। स्पॉट्स काफी लिमिटेड है तो जल्दी जल्दी से आपको जाना पड़ेगा एंड वहां पर जाकर अपने बच्चों को रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि वो आपको ये ना कहें कि समर वेकेशन में तो आप हमें ज्यादा अच्छी जगह घुमाने नहीं लेके गए लेकिन स्कूल शुरू होने से पहले आप हमें बैक टू स्कूल में नहीं लेके गए। सो जल्दी से अपने बच्चों को रजिस्टर कर लीजिए।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: तो जल्दी से अपने बच्चों को रजिस्टर कर दीजिए एंड फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर इसे एंजॉय कीजिए. एंड ये जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट गानों में से एक है. आज सुबह भी मैं आते आते ऑफिस पर जो है यही गाना सुन रही थी. तो एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ा के. मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में. स्टे ट्यून्ड टू बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Awesome.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

आशिक मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका सिबलिंग हो, ठीक है, जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, जिम जाना शुरू करता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड जो है आपकी लाइफ में हो जाता है प्रोटीन। मतलब चाहे खाने में प्रोटीन हो या ना हो, बातों में प्रोटीन जरूर आ जाता है हर बात पे। नहीं, इसमें प्रोटीन नहीं है ना, मैं सिर्फ प्रोटीन वाला खाना खाता हूँ। कहीं भी रेस्टोरेंट में जाके आपके पास कुछ प्रोटीन वाला है, नहीं नहीं चाय कॉफी नहीं, मैं सिर्फ प्रोटीन शेक पीता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एटलीस्ट कुछ महीनों तक सुननी पड़ती है, जब तक वो इन सब चीज़ों की आदत ना डाल ले, या फिर तब तक जो है सब ऐसे नॉर्मल ना हो जाए, वरना थोड़ा शुरू शुरू में फ्लेक्स करने के लिए तो सब यही करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, रिसर्चर्स का ये कहना है कि प्रोटीन जो है वो सबको सूट करे एंड सबके लिए अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन होना बहुत अच्छी बात है, खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ज़्यादा होना भी बॉडी को नुकसान दे सकता है। इससे आपके मेटाबॉलिज्म और आपके डाइजेशन पे काफ़ी असर पड़ सकता है। तो कुछ लोग जिनको कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, अगर वो प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करते हैं तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का जो है सामना करना पड़ता है। सो बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप प्रोटीन ले रहे हैं तो एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से लें, एंड डॉक्टर से कंसल्ट एक बार कर लें कि मुझे प्रोटीन जो है कितना खाना चाहिए, एंड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के हिसाब से ही जो है प्रोटीन का इंटेक आपको करना चाहिए। सिर्फ एआई को देख के जो है नहीं बता सकते आप, क्योंकि एआई को नहीं पता ना कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या चल रही है। सो इसी बात के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

बहुत ही अमेजिंग वाला गाना, लेकिन अब जो है मुझे पड़ेगा यहाँ से जाना। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशुशन, आप मेरे साथ लाइफ मस्त शो जो है वो एंजॉय कर रहे थे एंड हमने बहुत सारा फन किया, मस्ती किया, मजे किए एंड आपको बहुत सारी अमेजिंग बातें भी मैंने बताई, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि अभी जाऊंगी तभी तो कल लौट के आऊंगी। बाकी अगर आपको मेरी याद सताई तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आप जा सकते हैं, अमेजिंग कॉन्टेंट आपको वहां मिल जाएगा, चाहे जैसा भी आपको कॉन्टेंट चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। सो रेडियो ऑलिव को सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके जल्दी से फॉलो कर लो और नंबर सेव कर लो हमारा 3311063, 3311063। तो इस पे जो है आप जब चाहे तब हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुनाते हुए जा रही हूँ और एक ही बात जो है वो कहना चाहती हूँ कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे याद करते रहना एंड सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। टाटा बाय बाय, जियो बिंदास, टेक केयर।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग. ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा. द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर. बी रेडी टू

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ओह नो, फिर से स्कूल।
0: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, और बांध रखी है तो कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक उड़ान भरने वाले हैं, जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो अपने मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए शो को शुरू करते हैं, किक स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे बात करना चाहूंगा मैं इंस्टाग्राम फीड के बारे में। वो कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू ईट करके, सिमिलरली आजकल के जमाने में हम ये बोल सकते हैं यू आर व्हाट यू कंज्यूम करके। अगर इसी लॉजिक से देखा जाए तो शायद मैं एक परफ्यूम या फिर मैं घड़ी हूं, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम फीड में सिर्फ परफ्यूम्स और घड़ी के चीजें ही आते हैं और कुछ नहीं आती भाई। और एक टाइम पे जब मैं आर्मी एस्पिरेंट था, उस टाइम पे आर्मी रिलेटेड वीडियोज आते थे, बट अभी तो फुल परफ्यूम्स वॉचेस यही सारी चीजें आती हैं। और जानना चाहूंगा मैं कि आपके इंस्टाग्राम फीड में एक्सप्लोर पेज में क्या दिखता है। ठीक है, अगर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे तो बताइए, मुझे 3311063 पर मैसेज करके स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, देखते हैं हम। ये सुनते ही बहुत सारे लोग जरा डर गए होंगे कि यार नहीं यार, ये मैं कैसे कर सकता हूँ करके। मैं मजाक कर रहा था, बट आप अपने फीड के बारे में बताइए मुझे मैसेज करके कि आपके फीड में सबसे ज्यादा क्या आता है, कौन सा कॉन्टेंट आता है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो एक चीज मैंने देखी, देख के मुझे भी काफी अच्छा लगा। सो एक्सेंचर करके एक कंपनी है, उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयज जो है सेप्टेम्बर 1 से अपने अनयूज्ड वेकेशन डेज जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, मगर अब से जो है ये चीज होने लगी है। नए फिस्कल ईयर के बाद, यानी कि स्टार्टिंग हो रहा है सितंबर 1 से, एम्प्लॉयज को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है अपने लीव बैलेंस को मैनेज करने के लिए। और एक्चुअली ये अच्छी बात है, क्योंकि छुट्टी कहाँ लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, उसके बारे में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अगर एम्प्लॉय को मिल जाए तो वो थोड़ा और एन्जॉय करेगा उस चीज़ को, और वर्क प्लेस के प्रति भी थोड़ा एक वो रहेगा, अच्छा फीलिंग जो है रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इट्स अ स्मॉल कॉर्पोरेट विन, बट वी विल टेक इट करके जो है नेटिजंस जो है रिएक्ट कर रहे हैं, और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्निंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक छोटा सा सवाल है मेरे पास। सवाल ये है कि देखिए, हम सब गाना जो है बहुत पसंद करते हैं। गानों के बिना जिंदगी बहुत अधूरी लगती है, और म्यूजिक हमारी लाइफ में वो कलर डालता है जो शायद कोई और नहीं डाल पाता है। और म्यूजिक से मुझे एक चीज याद आई कि यार, कोई गाना ऐसा है जो आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है, या फिर आपके जिंदगी की कहानी जो है, आपकी कहानी को जो है डिस्क्राइब करता है? कोई एक गाना जो आपको पसंद है, जो सुन के आपको काफी रिलेटेबल लगता है, अपनी जिंदगी काफी आपको एक मिरर लाइक फीलिंग मिलती है, तो बताइए मुझे मैसेज करके 3311063 पर। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: ले लगा और हो जा रिचार्ज।
6: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: एक 3 साल के लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, जान के आप चौक जाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो मध्य प्रदेश में 3 साल के एक लड़के ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसकी चॉकलेट ले ली थी। काफी अम्यूजिंग न्यूज जरूर है। और उसके पोस्ट के नीचे जो है लोग कमेंट डाल रहे थे कि यही है भाई असली चॉकलेट बॉय करके। बट मैं ये सोच रहा था कि भाई वो क्या मतलब किस तरीके से उसने पुलिस को जो है गवाही दी होगी कि मेरी मम्मी ने मेरी चॉकलेट ले ली करके, या फिर क्या बोला होगा और पुलिस वालों ने कैसे रिएक्ट किया होगा। मैं बस वो सिचुएशन ऐसे इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था। काफी अम्यूजिंग, काफी फन सिचुएशन। बट या देखिए, चॉकलेट लेने से बच के रहिएगा आप। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में, विच इज olive.qa। वहां पे बैक टू स्कूल का एक बैनर दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए और आपको मौका मिलेगा एक बहुत ही फन फील्ड इवनिंग को एंजॉय करने का, स्कूल खुलने के पहले अपने बच्चों को मस्ती भरे एक माहौल में एंजॉय करते हुए देखने का। तो फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा, और यही बोलते हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: मैसी।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
3: Oh no, fir se school.
4: अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
5: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
4: एंड
5: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
4: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
5: कॉल 7022525।
4: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट Scribbles Gulf on Instagram.
1: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
4: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुम सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

भाई दुनिया जो है रुक सी गई थी, थम सी गई थी, क्योंकि क्लॉड रुक गया था। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो संडे के दिन क्लॉड जो है वर्ल्ड वाइड थोड़ा डाउन हो गया था। लोग जो क्लॉड यूज करते थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, फंसे गए थे। और मैं सोच रहा था कि यार अगर ऐसे ही सारे AI प्लेटफॉर्म्स एक दो दिन के लिए अगर रुक जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो क्या करेंगे अपन लोग, दिक्कत हो जाएगी। और सिमिलरली कुछ साल पहले, अगर आपको याद होगा, 2 साल पहले विंडोज में ऐसा कोई कंप्लेंट आया था जिसके कारण सारे विंडोज सिस्टम्स जो है रुक गए थे, थम से गए थे कोई अपडेट के कारण, और सारा कुछ रुक गया था। ऐसे कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी है। देखो क्लॉड तक ब्रेक ले रहा है, हम तो इंसान हैं, तो यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात जो है आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो फेरारी का जो ईवी है वो एक ऑक्शन में सोल्ड हुआ रिकॉर्ड प्राइस में, 40 मिलियन में जो है वो फेरारी का ईवी जो है बिका है, 36 टाइम्स मोर देन इट्स परसीव्ड वैल्यू। जितना वैल्यू उसका लोगों ने सोच रखा था उससे 36 टाइम्स ज्यादा है, और सारे पैसे जो है चैरिटी में गए हैं। और मैं सोचा कि भाई 40 मिलियन की गाड़ी, 40 मिलियन की गाड़ी यानी कि सोने से बननी चाहिए, मगर वो सोने से तो बनी है नहीं। बट फिर भी फेरारी इज अ ब्रांड एंड ब्रांड की वैल्यू रहती है, और फेरारी की पहली ईवी है तो ऑब्वियसली उसका एक अलग एक स्पेशल वैल्यू रहेगा। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Shack Man ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: स्कूल की घंटी बजने से पहले फन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए बैक टू स्कूल बैश के लिए आप भी रेडी हो जाइए। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के वेबसाइट में, विच इज olive.qa, और रजिस्टर कीजिए बैक टू स्कूल के लिए। और भाई, स्कूल शुरू होने से पहले फन फील्ड एक इवनिंग जहां पे बहुत फन गेम्स होने वाले हैं, थ्रिलिंग मेमोरीज आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। और 27th को जो है बैक टू स्कूल बैश होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में, और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And Doha Center, shop more, pay less.
3: Old Airport Road, Doha and Alcor.
1: Call 70222525.
4: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
5: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
6: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

एक चीज आपको याद दिलानी है भाई, अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और याद दिला रहा हूं फिर से कि अगर आपने रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए अभी के अभी, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले। हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट देखिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सुनते हुए स्टोरी डालिए, हमें टैग कीजिए, हम स्टोरी को रीशेयर भी करेंगे। उसके साथ साथ बहुत सारे डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आते हैं, तो तैयार रहिएगा, जीतने के चांसेस वहां पर भी है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: लगा और हो जा रिचार्ज।
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
0: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, पार्टी अभी बाकी है और पार्टी कंटिन्यू करने के लिए आज सिमरन आने वाली है। तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिएगा, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार जो है सिमरन को दीजिएगा। जाते जाते जाते यही याद दिलाना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। बी रेडी टू शॉप।

0: वाइब से करेंगे सबका स्वागत।
1: सबका स्वागत।
0: हो गया स्वैग से आप लोगों का स्वागत। 5:05 स्टूडियो की घड़ी पे।
2: टाइम चेक brought to you by नानाताल पहाड़ the अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुखवा के अलखोर।
0: सिमरन कौर आ चुकी है, जबरदस्त इवनिंग शुरू हो जाएगा। 4 घंटे अपने हैं बेबी।
3: बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना।
0: ढूंढते रहो, 9 बजे तक का अपने पास खुला टाइम है। कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311063 पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस भेज दो। मुस्कुराओ क्योंकि आप अपनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हो। ठीक है, बाकी मैं आ गई हूं तो स्माइल भी आई जाएगी।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जब आपको गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है ना, तो यही हाल होता है यार। मैं रो या हंसू, करूं मैं क्या करूं। अभिजीत की आवाज में अंजाम फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। हाँ जी, लोगों की जगह ले ली है धीरे धीरे करके, जो है वो सब लोग डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो है ना वो बहुत क्यूट भी लगती हैं। सो मेरे पास ना मेरे बचपन की ज्यादा फोटोज नहीं है, या फिर मेरे पुराने वाले घर में है जहां पर मम्मी के बाद वहां पे अब जाना होता नहीं है, मेरा मन करता नहीं है वहां पे जाने का। तो मेरे पास मेरी एक फोटो थी, वो हमेशा मेरे डैड के पास उनके पर्स में रहती थी, तो वो फोटो है मेरे पास। सो समहाउ मैंने AI से थोड़ा सा उसको उसका क्लीन अप करवाया, उसको थोड़ा सा सेट करवाया, और उसके बाद वो मेरी बचपन की फोटो इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है यार। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार AI की वजह से आप उन लोगों को भी अपने करीब महसूस कर पाते हो जो कि आपके पास में नहीं है, है ना। आप किसी भी तरह की फोटो जो है वो AI से जनरेट करवा सकते हो, जो लोग आपके पास नहीं है। और कभी कभी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यार अपनी वो फोटो देख के, तो वो वाली फोटो मैंने अपलोड भी की थी। सो कभी कभी AI का जो है वो फायदा भी होता है आपके लिए। लोग जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सुंदरी रेडियो ऑलिव कर के दरिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: रुकी नहीं रही है यार। सिमरन कौर आओ के साथ, और आप लोग मत रुक जाइए, क्योंकि अगर आप रुक गए और आपने सोचा कि चलो यार कल को रजिस्टर करवा लेंगे, लेकिन फिर हो सकता है कि आपके बच्चों को मौका ना मिले, क्योंकि समर वेकेशन खत्म होने वाली है, उससे पहले एक पार्टी तो बनती है, और आपके बच्चों को हम जो है वो बुला रहे हैं और आप लोगों को कर रहे हैं इन्वाइट बैक टू स्कूल बैच के लिए, जो कि अबू सिद्रा मॉल में होने वाला है इस 27 तारीख को दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे के बीच में। बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत कुछ होने वाला है, नॉन स्टॉप फन है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको बोले तो। उसके लिए क्या करना होगा, एंट्री चाहिए। एंट्री के लिए कोई चक्कर नहीं है, आप एक काम करिए olive.qa पे चले जाइए। जी हाँ, olive.qa पे जब आप जाएंगे तो वहां पर बैक टू स्कूल होगा, फॉर्म फिल करिए, लिमिटेड सीट्स हैं, तो फिर क्योंकि अगर आपने आज का काम कल पे डाला तो हो सकता है कि फिर आपको मौका ना मिले और आपके बच्चों को मौका ना मिले, तो फटाफट से जो है वो ये बैक टू स्कूल बैच के लिए बैगेजी सेट कर लो, ताकि फिर आप सारे मिलके फन करिए।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
1: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
0: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है बल्कि यह जागरूकता है। #keepitsustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
1: कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, करामा।
2: ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा, सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अबू सिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
3: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
2: एंड
3: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
2: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
3: कॉल 7022525।
2: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
4: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
2: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

गाना है यार, क्विक रिमाइंडर दूंगी आप लोगों को। मैं कह जी सोने उगता दी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आओ के साथ। सो क्या होता है कि कतर में हम सब रहते हैं तो बहुत सारे रूल्स हैं, कभी कभी आप लोगों को पता नहीं होता है, जिसमें से एक रूल ये भी है कि मान लीजिए कि यू नो खुदा ना खास्ता एक कोई रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पर आजकल हम सब की आदत है ना हर चीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करने की। सो अगर आप ऐसा करते हैं सो आपके ऊपर 10,000 कतरी रियाल का फाइन आ सकता है, पेनल्टी हो सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आप रोड पे कोई भी एक्सीडेंट देखते हैं सो उसको फिल्म ना करें, उसको सोशल मीडिया पे भी पोस्ट ना करें, फॉलो करें यार रूल्स को। और ये जो एक्सीडेंट वगैरह ये कोई फिल्म करने की चीज़ नहीं होती है, सोशल मीडिया पे डालने की चीज़ नहीं होती है दोस्तों। नंबर

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू

0: जी मैं जी सोनियों की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तुहाडे नाल एंड 6:05 2 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। क्या कहता मौसम
1: मौसम
0: और देखो ह्यूमिडिटी ये 3 दिन में जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। सो आज का वेदर मैं आपको बता देती हूँ, 38 डिग्री सेल्सियस है, फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस है, विंड जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी अभी 54% है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 43 डिग्री है एंड लोएस्ट जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस है। सो या धीरे धीरे करके अभी ये अगस्त ऑलमोस्ट निकल गया है, बस थोड़ा सा फिर उसके बाद नाइट जो है वो थोड़ी सी ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। हर रोज मैं खुद को दिलासा देती हूँ और आपको भी बताती हूँ, लेकिन इतनी पॉजिटिव आपको लाइफ में जो है ना इतना रहना चाहिए क्योंकि यही होना चाहिए लाइफ में यार। सुंदर ये रेडियो वाले गोर के जरिए जियो बिंदा।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Shackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ
1: सुनो सुनो सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
0: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
0: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर बी रेडी टू शॉप
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: पिया की गली जिया भूलाई, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि भाई खाने की भी एक लिमिट होती है यार। अरे बताती हो यार, मैं कहीं सुनियो कितना दिखी आल चल सत्रिया काल सिमरन कौर है तोड़े नाल
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। हम सबने होटल रेस्टोरेंट्स में देखा है कि जहाँ पे बुफे सिस्टम रहता है तो उनका एक प्राइस होता है कि इस प्राइस में आप ये बुफे में आप जितना मर्जी जो है वो खाइए। तो ठीक है यार, अपना क्या है, थोड़ा सा खा के ज्यादा तो खा नहीं पाते हैं, पेट जो है वो भर जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपनी लिमिट्स भूल जाते हैं। एक स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक चाइनीज लाइव स्ट्रीमर है, ठीक है, मिस्टर टैंक करके। सो वो क्या हुआ है कि एक सी फूड के बारबेक्यू बुफे में गया और वहां पर वो बंदा खाया जा रहा, मतलब 1.5 किलो तो उसने प्रॉन्स खाए हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है खाई हैं भाई, उस बंदे को बैन कर दिया गया। वो तो भाई ऐसे मतलब यू नो रेस्टोरेंट वालों को दिखा रहा है कि जैसे भाई उन्होंने कोई कर्जा देना है इसका, तो उन्होंने बोला भाई तू निकल यहां से यार, कैसे कैसे लोग हैं यार। हालत होती है कि अगर मान लीजिए मैं मतलब खाने के मामले में ना मैं वो नहीं हो पाती हूँ, अगर मुझे वो चीज देखे, फॉर एग्जांपल अगर बुफे है तो मैं बुफे में से सिर्फ एक दो चीजें उठाऊंगी, मैं बहुत सारी चीजें अपनी प्लेट में रख के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं मेरे को क्या होता है, मतलब कि लाइक अच्छा फॉर एग्जाम्पल इंडियन खाना है तो मैं एक पनीर की सब्जी उठाऊंगी और या चावल उठाऊंगी, बस वो खा लूंगी और साथ में ज्यादा से ज्यादा दाल खा लूंगी, मैं बहुत सारी चीजें नहीं उठा के खा सकती हूँ फिर यहाँ पे। तो

0: सुंदर ये रेडियो ऑलिव पर केदरी जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: स्टूडियो की दादी की हलचल, सत श्री अकाल। सिमरन कौर है आपके साथ। आप और आपके बच्चे जो है वो मिलकर बैक टू स्कूल बैच के लिए तैयार हो जाइए। रेडियो ऑलिव आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये 27 अगस्त को दोपहर 3 से लेकर शाम 7 बजे तक हम होने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में हमारी टीम के साथ, और आप लोग भी पहुंच जाइए। अब देखो, ये पहुंचेगी आप कैसे, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, olive.qa, रेडियो ऑलिव का वेबसाइट है ना, olive.qa पे जाइए, वहां पर बैक टू स्कूल का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। मतलब कल पे मत छोड़िएगा, आज के आज ही कर दीजिए एंड अपने बच्चों को रेडी कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया है, फिल कर दिया है फॉर्म, तो कितने जने हो आप आने वाले, मुझे व्हाट्सएप करके बताओ 3311063 पर। अगर आप अभी कर रहे हो तो मुझे बताओ आपके घर में कितने बच्चे हैं और कितने लोगों को आप लेके जो है वो आने वाले, और आपने रजिस्टर करवा लिया है। देखिए, रजिस्टर करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जो क्रेजी गेम्स हम खेलने वाले हैं, क्रेजी फन जो हम करने वाले हैं, आपके बच्चे स्टेज पे आके हमारे साथ वो फन जो है वो कर सके। क्योंकि अगर आपने नहीं किया वो रजिस्टर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्त।
1: या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो।
0: सुन दे रहो रेडियो ऑलिव करके दे रहो जियो बिंदास।
2: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
3: Gifting partner, Daiso Japan. You name it, we have it.
2: And
3: Doha Center, shop more, pay less.
2: Old Airport Road, Doha and Alcor.
3: Call 70222525.
2: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
4: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बात तो सही है यार भाई, एक साइड में लगा दो, या तो आवाज कर दो या बर्बाद कर दो यार।
1: तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त,
2: मैं चीज बड़ी हूँ मस्त।
0: एक नंबर जेंजी एक वर्ड यूज करते हैं सीईओ। नहीं नहीं, ये जो आप सोच रहे हो उसका मतलब ये नहीं है। ये सीईओ इसलिए यूज किया जाता है कि कोई बंदा अगर किसी चीज में एक्सपर्ट है, वो चीज सही भी हो सकती है, वो चीज गलत भी हो सकती है। सो एक तरीके का ये सरकैज़म है, अगर किसी में कोई गलती भी है, कोई फ्लॉ भी है, तो उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है। लाइक सीईओ कंप्लेनिंग और सीईओ ऑफ मिक्सिंग अपवर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज के लिए आप किसी को सरकैज़म में साथ है, ये तो सीईओ है, मतलब नहीं, उसका वो मतलब नहीं है जो हम एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है। सो 6:51 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, अगले घंटे आती हूँ यार।

0: पैसा खत्म पैसा हजाम
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
4: Fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
5: Namaste, behno aur bhaiyo. Bade hi kam shabdon mein aapko sunana chahta hoon. Us saal ka lokpriya geet. Yeah.

जी आप भी मस्त है, मैं भी मस्त हूँ। कम थोड़ी है हम किसी से, समझना भी नहीं चाहिए। अगर जब आपके अंदर ये इश्क होता है ना खुद के लिए, तो आप लोगों में वो इश्क जो है वो बांट सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर खुद ही दुख दर्द पीड़ा चल रही है, तो फिर बाकी लोग जो है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। इसीलिए लाइफ में मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहा करो यार। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, वो फिल्म मेरे दिल के बड़ी करीब है यार।

संघर्ष फिल्म के बारे में ये बताया कि इस फिल्म में आलिया भट्ट थी। यस बिल्कुल। सो उसमें जो प्रीति जिंटा जब छोटी रहती है, छोटी रीत का रोल जो था वो आलिया भट्ट ने किया था, दो छोटा सा रोल था। एंड उसके साथ साथ आशुतोष राणा ने भाई साहब एक के बाद एक फिल्म जो थी वो नेगेटिव रोल में इतनी ज्यादा बढ़िया थी। दुश्मन फिल्म में 1998 में नजर आए थे, फिर संघर्ष फिल्म में आ गए, उन्होंने क्या पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी यार। बट क्या हुआ था कि इस फिल्म का जो अक्षय कुमार ने रोल किया था ना, उसमें शाहरुख खान को ऑफर किया था महेश भट्ट ने, बट महेश भट्ट प्रोडक्शन की बैक टू बैक फिल्में चाहत एंड डुप्लीकेट दोनों ही यू नो फ्लॉप हो गई थी, तो शाहरुख खान ने इस फिल्म को साइन जो था वो नहीं किया। और ये गाना मुझे रात दिन, जो कि थोड़ी देर में आप सुनने वाले हो, ये कॉपी किया था इसका, इसकी ट्यून जो है वो मुझे देखकर आपका मुस्कुराना, ये फिल्म आई थी एक मुसाफिर एक हसीना 1962 में। इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें, थोड़ा सा इंतजार करो, सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

आपकी लाइफ में कोई है ना तो ये गाना और भी खूबसूरत हो जाता है। नहीं मुझे ऐसी लग रहा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है जिंदगी में दर्द भी कोई नहीं लेकिन दर्द भरे गाने सुन के मैं फील ले लेती हूँ यार। सो इसी तरह रोमांटिक गाने भी हैं।

0: यार क्या करूं?
1: बेकरारी समझ ले मेरी, आदत हो चुकी है तेरी।
0: एक नंबर गाने जो है चल रहे। थैंक यू सो मच आसमा इतने प्यारे मैसेज के लिए जो कि आप मुझे भेजती ही रहती हैं यार। सो या फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, संघर्ष। जी हाँ, संघर्ष फिल्म का नाम पहले संघर्ष नहीं था, इस फिल्म का नाम पहले अंधेरा रखा गया था। इस फिल्म में जो है वो कोई एक्टर काम नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें प्रीति जिंटा का रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ज़्यादा था इसमें रोल उनका, सो काफ़ी मीटी था। सो लेकिन फाइनली अक्षय कुमार ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर उनका करियर का फेज जो था वो ऐसा बढ़िया नहीं चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार ये फिल्म कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जिन्होंने अक्षय कुमार की एक्टिंग देखी थी उन्होंने सबने बोला था कि भाई देख तू इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाला है। सो उसी साल वास्तव फिल्म रिलीज हो गई। अब संजय दत्त के हाथों में आ गया वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड। लेकिन नो डाउट अक्षय कुमार के लिए फिल्म जो थी इतनी सारी फ्लॉप देने के बाद वो टर्निंग पॉइंट था। सो या ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो बेबी मैं बोल रही हूँ देख लेना, बहुत प्यारी फिल्म है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास। वापस लौट के रियलिटी चेक लेके आ रही हूँ।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: वाइब है यार इस गाने की, है ना, अपनी अनजाना अनजानी से आप ये गाना अ फील गुड दो लाइन में पूरी जिंदगी सिमट गई है। कहते हैं कि जब अकल आएगी ना तब सब छोड़ दोगे। देखो यार, कभी कोई इंसान आपको दिख रहा होता है कि वो यार गलत रास्ते पे चला हुआ, वो गलत कर रहा है, इस इंसान पे विश्वास कर रहा है या प्यार में पड़ा हुआ है या फिर ये काम कर रहा है, और आप वो चीज देख रहे हो, आप वो इंसान जो है वो उसमें खुद को देख रहे हो, क्योंकि आप ये गलती जो है वो लाइफ में कर चुके हो और आप चाहते हो कि वो सामने वाला ये गलती ना करे। आप उसको अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करते हो लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसने वो फील वो ली ही नहीं है कि भाई इसके बाद जो होने वाला है वो सिर्फ आपको दिख रहा है, वो उस इंसान को नहीं दिख रहा। इसलिए कहते हैं ना कि जब अकल आएगी तो सब छोड़ दोगे। फिर अपने आप इंसान जो है ना, जब हर किसी का लाइफ में मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लात धक्के खाना बहुत जरूरी है। जब तक जिंदगी आपको ये लात धक्के धोखे सब नहीं देगी ना, तब तक आपको भी अकल नहीं आएगी यार। चाहे आपको जितना मर्जी सब समझा ले, उस टाइम पे सब आपको अपने दुश्मन ही लगते हैं यार। और ये भी नशा होता है,
1: पहला नशा पहला खुमार।
0: और ये पहले नशे का खुमार और बुखार किसी की नहीं सुनने देता। वापस लॉर्ड की नेम गेम खेलने वाली हूँ, गेट रेडी। एंड इस गाने की वाइब और ये गाना बवाल टोटल।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Geo Bindas. Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ठीक हो? और बिना देर लगाए अब आप लोगों के नाम लेते हैं। आ गया वही टाइम बिल्लो, ठीक है? जेड़ा जेड़ा थोड़ा नाम हैगा मेनू लिख के भेज दियो। ओके, हिंदी में बता देती हूँ, सबको समझ लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोलूं, तो मैं आपको लाइव अभी बोलते हुए मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे रही हूँ। उस व्हाट्सएप के नंबर पे आपको अपना नाम लिख के भेजना है। तो अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिख के भेजना है। चारवी, अनसुर, मकसूद, अब्बास, शैलेश, शिव, नौमान, साजिद, अदील भट्ट, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच। विशाल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। किसी ने है ना लिख के भेजा है ना, क्यों लिख के भेजा दोस्त, ये तो मेरा डायलॉग है। ओके, चेरी जी, थैंक यू सो मच। पाली जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फैसल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मुजाहिद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सरफराज जी, थैंक यू सो मच। बिपिन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राहिल जी, थैंक यू सो मच। संदीप जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इफ्तिकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। अदील जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजो। अनीजा जी, थैंक यू सो मच। एसके जी, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, थैंक यू सो मच। रेशम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सुनीता जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्त, हाय हेलो मत लिखो यार, कोई फ़ायदा नहीं है यार। वन जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ आपने नाम लिख के भेजना। इफ्तिखार जी, थैंक यू सो मच। फीबा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। राहिल जी, थैंक यू सो मच, आपका नाम तो ले लिया यार। सलीम जी, थैंक यू सो मच। कमकम जी, थैंक यू सो मच। कमकम खुशबू, ओके फाइन। मोहम्मद वसीफ जी, मोहम्मद अफीफ जी, थैंक यू सो मच। तीरथ प्रसाद जी, भगवान गिरी जी, तस्कर जी, थैंक यू सो मच। बुशरा जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बट आप थैंक यू लिख दो आप, और अपना फेवरेट वाला ही मुझे बना लो। और ये बहुत ही खूबसूरत गाना है मिकी वायरस से, इसको सुन लो और अगले घंटे हम खेलेंगे एक चुटकी सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।

0: Manila's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों, जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27th दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है, तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर, बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है, तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
4: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
3: एंड
4: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
3: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
4: कॉल 7022525।
3: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
5: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
3: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: This is Deepika Padukone.
1: Deepika Padukone.
0: Radio Olive 106.3.
2: I'm in number one. Radio Olive.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: दिल ने जिड़ा है ना, बहुत चलाक चीज है। अपने वो लगता है दिमाग चलाकी करता है, दिल भी बड़ा खराब होता है यार। 8:22, 50 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। सिमरन कौर आपके साथ है।
1: आज दिल गुस्ताख है, पानी हो गए आग है, धड़कन भी बेताब है, जल जल शरारती।
0: और धड़कन अगर आपकी बेताब है तो फिर ये गाना अच्छा लगेगा। तुम्हें

0: इतना इजी नहीं होता किसी को भुलाना डार्लिंग, लेकिन ये गाना भूल तो नहीं गए? देखो यार, याद आ जाएगा आपको।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: ओके, सो मैं आपको एक गाने का एक चुटकी सॉन्ग जो है वो सुना रही हूँ, और बताइए आप, रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए ठीक है पहले, ताकि आप रिकॉर्ड कर पाए, तीन चार बार सुन लीजिएगा फिर आपको पता लग जाएगा। तो बताओ ये गाना कौन सा है? ओके, एक बार और सुना दी हूँ। ये कौन सा गाना है? देखो प्लीज, लिखना नहीं है दोस्त, गा के सुनाना या बोल के बताना, मतलब इन शॉर्ट वॉइस नोट भेजना, मुझे आपकी आवाज सुननी है, ये समझ लीजिए आप, एकदम सिमरन कौर वाली एनर्जी के साथ। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना बताइए और भेज दीजिए 3311063 पर।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुनियो कितना की हाल चाल सत श्रीकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल बट आपको ये पहचानने में जमाना नहीं लगा
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: सो मैंने आपको एक चुटकी सॉन्ग में सुनाया था और चलिए आप लोगों के जवाब जो है वो सुनते हैं।
3: Hey Simran,
0: Hi Moon.
3: The song is कहने को जश्न बहारा है।
0: Okay, thank you so much. Moon, थोड़ा सा गा दिया करो यार।
4: जश्न बहारा है।
0: अपनी गा दी। इन्होंने सिर्फ एक लाइन गा के छोड़ दिया। आपका नाम क्या मतलब आपका बिल आता है जब आपके यहाँ पे व्हाट्सएप चलता है कोई ऐसी सेटिंग आ चुकी है जिसमें बिल आता है तो मतलब एकदम बोला ना यार हे सिमरन अपना नाम बताओ फिर गाना बंद चालू करो यार।
5: हाय सिमरन जी वेरी गुड इवनिंग मेरा नाम है विनायक।
0: अच्छा हंसना था।
5: और ये आज जो आपने ये ट्यून जो बजाया है ये मेरा एकदम फेवरेट सॉन्ग है।
0: ओके
5: जो द अकबर से
0: जी
5: और ये सॉन्ग है कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है
0: क्या बात है यार
5: फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में
0: ब्यूटीफुल
5: छुपा है कोई रंग फिजा के चिलमन में सारे सहमे नजारे हैं सोए सोए वक्त के दारे हैं दिन में कोई गूंज से बातें हैं ओ, ओ कहने को जश्न बहारा है इश्क ये देख के हैरा है
0: थैंक यू
5: सो मच
0: एंड
5: रेडियो ऑलिव जियो बिंदास Have a nice evening.
0: You too. बधाइयां मिठाइयां तो बहुत सारे बढ़ा सबसे ज्यादा बैंड आपकी तब बजती है जब आप ना एकदम फ्लो फ्लो में गाना गा रहे होते हो और लिरिक्स आपके गलत निकल रहे होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए यार आप लोग कमाल हो यार
6: होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है
0: क्योंकि मैं भी आप लोग जैसी हूँ गलत लिरिक्स गाती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ

सिमरन कौर है तुड़े नाल और सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है। लेकिन कल 5 बजे शाम को फिर से जबरदस्त इवनिंग्स में होती है आपसे मुलाकात। कल ट्यूसडे हो जाएगा और कोई बात नहीं, 2 दिन में आ जाना वीकेंड। मैं पॉजिटिव ऐसे दे रही हूँ, पॉजिटिविटी दे रही हूँ आपके अंदर यार। चलो ओवर थिंकिंग मत करना, ठीक है? खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम येस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो एक बहुत ही ऑनेस्ट सा सवाल पूछती हूँ आपसे. जब घर में आप बिल्कुल अकेले होते हो तब आप कैसे बिहेव करते हो? बिकॉज आई हैव अ फीलिंग वो वर्जन सबसे रियल होता है. अकेले में हम फ्रिज खोलकर 15 बार देखते हैं डिस्पाइट नोइंग कुछ नया नहीं है वहाँ पर. म्यूजिक चला तो कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है, मिरर के सामने रैंडम एक्सप्रेशंस चालू हो जाते हैं और कभी कभी तो खुद से ही पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाती है. लेकिन जैसे ही डोरबेल बजती है और सडनली कोई सफिस्टिकेटेड ह्यूमन बीइंग चालू हो जाता है. बट व्हाई डू वी बिहेव डिफरेंटली अराउंड पीपल? क्योंकि सोसाइटी के साथ हम थोड़ा सा फिल्टर लेकर चलते हैं और जब कोई देख रहा होता है तो फिल्टर आ जाता है और जैसे ही कोई देखना बंद करता है तो फिल्टर उतर जाता है. मे बी द रियल यू इज नॉट द पर्सन एवरीवन सीज, इट्स द पर्सन यू आर व्हेन नोबडी इज वॉचिंग. तो आप मुझे बताओ आपकी सबसे फनी ओनली व्हेन आई एम अलोन हैबिट क्या है? जैसे मुझे तो बहुत मजा आता है मिरर के सामने डांस करने में या खुद से बातें करने में. आप बताइए आपकी फेवरेट चीज क्या है. 3311106 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.

आज एक अजीब कैटेगरी की मेमोरी की बात करते हैं, ऑलमोस्ट। कभी कोई जॉब थी जब आप ऑलमोस्ट बस उसे लेने ही वाले थे, कोई ट्रिप जब ऑलमोस्ट प्लान हो ही गई थी, कोई पर्सन जिससे फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट रिलेशनशिप बन ही गई थी, या वो डिसीजन जिसके बारे में आज भी कभी कभी आप सोचते हो कि व्हाट इफ। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चीज़ें एक्चुअली हो जाती हैं उसकी स्टोरी एक दिन कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट स्टोरी का एंडिंग ना कभी लिखा ही नहीं जाता, इसीलिए इमेजिनेशन उसमें अपनी एंडिंग बनाती रहती है। मे बी दैट्स वाई जो अनफिनिश्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं वो दे कैन स्टे इन आवर माइंड लॉन्गर देन फिनिश्ड चैप्टर। लेकिन एक थॉट याद रखिए कि हर ऑलमोस्ट का मतलब मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कभी कभी ना लाइफ सिंपली कह रही होती है कि दैट वॉजंट यू नो योर चैप्टर। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि काश ऑलमोस्ट हुआ हुआ काम वो हो गया होता, तो हो सकता है कि आज जहाँ पर आप हैं वहाँ नहीं होते। सो उसे रिग्रेट की तरह मत लीजिए, यू नो रिग्रेट की तरह आप लेते हो या पॉसिबिलिटी की तरह देखते हो उसे। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। नंबर इज सेम 3311063।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
3: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th अगस्त इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा। द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू।

So, आपने कभी नोटिस किया है हम रोज कितनी चीजें बोलते हैं बिना एक्चुअली सोचे कुछ यू नो स्नीज करे ब्लेस यू या फिर कोई जाने लगे तो उसको बोलते हैं कि टेक केयर कोई पूछे हाउ आर यू और तुम कैसे हो तो आई एम गुड चाहे अंदर से पूरा सिस्टम क्रैश हो रखा हो दीज लिटिल फ्रेजेस आर लाइक सोशल शॉर्टकट्स ठीक है यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज सो हमें पता होता है कि सामने वाले को क्या कहना है और सामने वाले को पता होता है कि हमें क्या कहना है बट कभी कभी इसी रूटीन के बीच में एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन खो सी जाती है नेक्स्ट टाइम समवन आस्क कि हाउ आर यू तो ट्राई सेइंग समथिंग रियल मतलब ऑनेस्टली थोड़ा सा टायर्ड हूँ या फिर आज मूड अच्छा नहीं है आज बस घर जाने का मन कर रहा है मे बी द बेस्ट कॉन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट होती है राइट व्हेन वी स्टॉप गिविंग ऑटोमेटिक आंसर्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सच बोलना बहुत अच्छा होता है आपका मूड अच्छा हो जाता है क्योंकि मैंने ये कल ही ट्राई किया है सो आपका वो कौन सा फ्रेज है जो आप दिन में इतनी बार बोलते हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव नंबर इज सेम 3311063 और मैं हूँ मुस्कान आपके साथ स्टे ट्यून जियो बिंदास

0: ये है मिडनाइट लाउंज। ओह नो, फिर से स्कूल। अरे समर वेकेशंस खत्म होने पर रोना क्यों? जब स्कूल शुरू होने से पहले एक पार्टी अभी भी बाकी है। रेडियो ऑलिव लेकर आ रहा है सबसे बड़ा सबसे कूल बैक टू स्कूल बैश। अब उसिद्रा मॉल में इस अगस्त 27 दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। वहाँ होंगे एपिक गेम्स, क्रेजी चैलेंजेस और नॉनस्टॉप धमाल। किताबें खोलने से पहले बच्चों को खुलकर खेलने का एक और मौका तो बनता है। तो एक्सक्लूसिव एंट्री चाहिए? प्रोसेस बड़ा सिंपल है। अभी जाओ olive.qa पर बैक टू स्कूल फॉर्म फिल करो और अपना फोन अपने पास रखना, क्योंकि हमारी कॉल कभी भी आ सकती है। स्पॉट्स लिमिटेड है तो आज ही रजिस्टर करें olive.qa पर। मिलते हैं अबू सिद्रा मॉल में। वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
1: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
0: एंड
1: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
0: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
1: कॉल 7022525।
0: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
2: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
0: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the heart

से नहीं होता, हम उस जगह के साथ ना मेमोरीज अटैच करते हैं। वहाँ फर्स्ट बर्थडे हुआ, फर्स्ट पनिशमेंट मिला, पहली बार स्कूल के लिए आप रेडी हुए, पहली बार किसी से सीक्रेट फ़ोन कॉल किया था। इसीलिए कभी कभी हम घर को मिस नहीं कर रहे होते, हम उस वर्जन को जो हमारे अंदर एक डिफरेंट वर्जन था उसे मिस कर रहे होते हैं जो उस घर में रहता था। तो अगर आपको अपने चाइल्डहुड होम में एक शाम वापस मिले सुकून से, तो सबसे पहले आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

गुड इवनिंग, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, मिडनाइट लाउंज. इमेजिन कीजिए, आप घर से निकले, 5 मिनट में कॉफी, थोड़ा आगे ग्रोसरी और कॉर्नर पर एक फार्मेसी, नियर बाय एक पार्क भी है और डिनर के लिए रेस्टोरेंट भी वॉकिंग डिस्टेंस पर. मतलब हर छोटी चीज़ के लिए गाड़ी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. अर्बन प्लानर्स दुनिया के कुछ सिटीज़ में 15-मिनट सिटी कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं. आइडिया ये है कि डेली नेसेसिटीज़ जो है वो रीज़नेबली क्लोज हों, सो जो लोग हैं वो अपना टाइम स्पेंड कर पाएँ. ट्रैवलिंग में जो टाइम वेस्ट होता है वो एक्चुअली आसपास घूम कर या फिर वॉक करके स्पेंड कर पाएँ. और ऑनेस्टली सोचिए कितना टाइम हम सिर्फ आने जाने में स्पेंड कर देते हैं. मे बी फ्यूचर का लग्जरी बिगर हाउस नहीं होगा, स्मॉलर डिस्टेंस होगा. आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जहां पर हम 10 मिनट में, 15 मिनट में या 30 मिनट में सारी चीज़ें अपने आसपास मंगवा लेते हैं. लेकिन उससे एक लॉस होता है, हम वॉक ही नहीं कर पाते. टाइम तो बच जाता है पर यू नो, बाहर निकलना, ताज़ी हवा लेना, वो सब नहीं हो पाता. सो, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर का लग्जरी बिगर हाउस तो नहीं होने वाला, स्मॉलर डिस्टेंस होने वाला है. सो, अगर आप अपना परफेक्ट नेबरहुड डिजाइन कर सकते घर के 5 मिनट के अंदर, कौन सी 5 चीजें जरूर होनी चाहिए आपको लगता है कि आप रखते ही. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान. नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गुड इवनिंग। एक बार अपना फोन खोलो, स्क्रीनशॉट के फोल्डर में जाओ और खुद से पूछो कि मैंने ये क्यों सेव किया था। सो योर फोन इज बेसिकली अ स्क्रीनशॉट म्यूजियम। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो एक रेस्टोरेंट का मेन्यू, एक ड्रेस, एक रैंडम कोड, एक फ्लाइट डिटेल्स फ्रॉम 2024 और एक मैसेज जिसको आपने इम्पोर्टेंट समझा था और 600 स्क्रीनशॉट्स लेटर। मतलब यार कुछ भी डिलीट करने का मन ही नहीं किया, पर क्यों? क्योंकि सेविंग समथिंग गिव्स अस अ टाइनी फीलिंग ऑफ आई विल नीड दिस समडे, इवन व्हेन डीप डाउन हमें पता होता है कि हम इसको दोबारा देखेंगे भी नहीं। एंड मे बी लाइफ में भी हम ऐसा ही करते हैं, ओल्ड मैसेजेस, पुराने फोटोज, मेमोरीज, हम सब कुछ सेव करके रखना चाहते हैं, बट समटाइम्स लेटिंग गो डजंट मीन द मेमोरी वॉजंट इम्पॉर्टेंट। इसका सिंपल मीनिंग है, यू डोंट नीड टू कैरी इट एवरी डे, राइट? वैसे ऑनेस्टली बताइए, आपके फोन में सबसे रैंडम स्क्रीनशॉट्स क्या पड़े हुए हैं? मैं तो अगर अपनी बात करूं तो कोई रैंडम डाइट चार्ट, कोई ड्रेसेस, कोई लुक, कोई शूज, बस यही सब होते हैं मेरे स्क्रीनशॉट में। आप मुझे बताइए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ, नंबर है 3311063 एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Yeah, Midnight Lounge.
2: Yeah, Midnight Lounge.
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओपनिंग ऑन 19th August इवनिंग, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा. द वेट इज ऑलमोस्ट ओवर, बी रेडी टू शॉप.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम मिडनाइट लाउंज. कभी किसी स्ट्रेंजर ने आपके लिए कुछ छोटा सा किया है और आपको वो पर्सन आज तक याद हो? मे बी एयरपोर्ट पर किसी ने लगेज में हेल्प किया हो, किसी ने ट्रैफिक में आपको रास्ता दे दिया हो, किसी शॉप में किसी स्ट्रेंजर ने कहा हो यू गो अहेड और आपका दिन बन गया हो. मतलब छोटे छोटे मोमेंट, मे बी 30 सेकेंड्स आप दोनों ने बात की हो और कभी दोबारा मिले भी नहीं, लेकिन वो काइंडनेस वो याद बन जाती है. मतलब कई बार ऐसा हुआ है, मैं बिलिंग काउंटर पर जाती हूँ और मुझे बहुत जल्दी हो रही होती है और उस टाइम पर अगर कोई हेल्प कर देना तो ऐसा लगता है दैट्स द स्ट्रेंज थिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. हम सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े जेस्चर्स जो होते हैं वो मैटर करते हैं, बट समटाइम्स अ वेरी स्मॉल एक्ट अराइव्स एट एग्जैक्टली द राइट मोमेंट और सामने वाले को पता भी नहीं होता कि उसने आपका दिन कितना बेटर कर दिया है. सो टुनाइट एक ऐसा स्ट्रेंजर को याद कीजिए जिसने कभी आपके साथ काइंडनेस की थी. आपको नाम भी नहीं पता, कोई बात भी नहीं पता. कुछ लोग नाम के बिना भी यू नो याद में रह जाते हैं और मे बी आज किसी और के लिए वो स्ट्रेंजर आप बन सकते हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मुस्कान है आपके साथ और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. द नंबर इज सेम 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

पॉज। आप किस मोमेंट को पॉज करते, स्टॉप करते? किसी हॉलिडे को, किसी फैमिली के डिनर को, किसी पर्सन के साथ वो एक परफेक्ट इवनिंग, या शायद एक कम्प्लीटली ऑर्डिनरी मोमेंट। क्योंकि फनी बात यह है कि जब मोमेंट हो रहा होता है हम यूजुअली रियलाइज नहीं करते कि वो स्पेशल है। हम सोचते हैं बस नॉर्मल डे है, और ईयर्स लेटर वही नॉर्मल डे याद आता है, वही टेबल, वही हंसी ठहाके, वही लोग, वही घर। मे बी लाइफ में ना स्पेशल मोमेंट पहले से लेबल करके नहीं लाइफ देती, हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सो इमेजिन कीजिए आपके पास अभी एग्जैक्टली 10 मिनट का पॉज बटन है, नो फोन, नो वर्क, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप किस मोमेंट को पॉज करना चाहोगे? सो मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। कभी कभी रात का बेस्ट कॉन्वर्सेशन दुनिया से नहीं, खुद से होता है। सो फॉर नाउ आई हैव टू से गुड नाइट कतर, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। बाय, स्टे ट्यून्ड।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: With Nesto Hypermarket, now opening on 19th August, Old Passport.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।